0: आप मनीष भैया, अपन और अन्य अभय दिनेश मस्ताना जी और उनके साथियों की आवाज में ये इन्होंने से लोकगीत को सुनो है वो, और हमें लगा था कि आप समय ना गवात भाई, अपन को बेरू भोजी को भी सुन लें चज्जी का, भी अपन को बहुत ही उम्दा जानकारी दे रही हैंगी।
1: तो चलो अपन सुनते हैं बेरू भोजी की जरूर नाटक को।
2: ओ कल्लू के पापा हमें लगा लेकर गए, मैं रात भर चिल्लिया चिल्लिया के हट जा, भुनसारे जल्दी आदत जो भुनसारे जल्दी आदत जो लाइट भी चली रहत, हाँ हाँ सोते जाने के दे तीनों बैठी रहते ही, अब आन दो रुक जाओ फिर मैं बतात होंगी, मुझे इतनो काम डरो, मुझे आज सब्जी भाजी नहीं है बिल्कुल घर में, क्या गोले बना लूं मैं अपने घर में, मेरी तो समझ में नहीं आती कि मैं करूं का, इनके माँ इतने परेशान हो गए, ओ कल्लूगा कितने मर गए ऐसे ही मोड़ी मोड़ा हो गए बिल्कुल।
3: तुम्हें तो उठत बैठत गलत रहे जीत, का बात है बता काय को बुलाओ?
2: मैंने काय को बुलाओ?
3: और कलुगा तो गाओ तो तीरथ,
2: तो मैंने तुम्हें बुलावे खिलाने गई थी देखा को, अब घर में कछु नहीं है खावे, मैं क्या करूँ बताओ, मैं क्या बना लूँ, मैं तो पूरी जिंदगी कर रही है चाहिए
3: तो उसे तना कछु कर सोते हैं तो फिफ्टी बताने लगा।
2: हाँ तुम्हें तो यानी फिफ्टी दिखा रहे, मैं बताऊँ कछु नहीं है घर में आज खावे, मैं क्या बना लूँ मोड़ी मोड़न खिलाने।
3: अरे तो ऐसी कही तो जात कछु बात की,
2: तो मैंने रात में कही नहीं आती क्या तुमसे?
3: अब मैं सो गाओ तो रात के हार उठा को तू पतो ही है चाही से लगी बड़बड़ा भी, मैं रात है तो पानी बरा भी जात,
2: तो तुम पानी बरा रहे मैं घर को काम तो कर रही होंगी, कौन का चूमे परिरत होंगी?
3: अरे तो बताई तो जात, मैं सवेरे तो आ गया तो खाई नहीं गई, अब मैं लाया सब,
2: अब तो मरंदो तुम पानी को चले जाओ, मैं चली जाऊंगी लालाजू के संगे,
3: अब तेने किचन गार्डन तो लगाओ तो बाह में नहीं हो सब्जी,
2: हो तो जात है अब का रोज के रोज मैं बाद में बेच आई थी इकट्ठी, अब पानी डाल दो फिर से वही जाओ तुम,
3: बेच भी की जरूरत घरे चाहे हुए चाहे ना हुए,
2: तो मैंने पूछ तो ली थी तुमसे कि मैं बेच दूं कि नहीं बेच दूं, मोए पे चढ़ यार बिल्कुल।
3: अरे तो अब जितने पैसा जैसे बेच वे से मिली थी, अब इनसे फिर से खरीद लो तनक मनक,
2: तुम्हें पैसा नहीं खो रही क्या?
4: अरे अरे का होगा भाजी काय लगे भौजी घुमा रहे, वो कल को कह रहा तो कि मम्मी घुमा रहे पापा काय मार रहे बता,
3: तू तो तनक में खबर पड़ जाते ही तो मूड पे चढ़ाए जाए।
4: अरे भज्जा ऐसी कछु बात नहीं है कि हम तो तनक जो देखा था के का हाल चाल चल रहा अपनी भौजी के भज्जा को का घर को कैसे काल चल रहे,
2: तो लालाजू वो मैं इनसे कह रही थी कि बिल्कुल सब्जी भाजी नहीं आती, तो अब लालाजू मैं का करो मैं का बना लो रोज की रोज, ये मोई पे बड़े बिल्कुल 24 घंटा मोई पे गुस्सा होते रहते बिल्कुल,
3: देख ले जाए तो केवल बहानों से जिद लड़बे को,
2: कबे लड़ी मैं बताऊं कहूं लड़ी आज ही तो लड़ी हो,
3: अब कैसे ठीक पे बता रही देख लेते हैं,
4: देख लेते हैं शांत हो जाते हैं काय लगी भज्जा ने तनक, अब हार थको है तो आदमी को तनक कछु के है तो चेटा तो जरूर ही आदमी, अब
2: हाउ सब रे मुंह पे उतरत बिल्कुल गुस्सा में तो बिल्कुल ऐसी आई होंगी।
3: अरे अरे चुप हो जा अब नहीं रो, सही तो कह रहा और वो
2: हाँ तो आप सही कह रहे हैं, तुम दो जने जुड़ गए होंगे, अब मेरी को है वो पिछले भी।
4: अरे भाजी ऐसी कछु बात नहीं है, को से नहीं मिल रहा हो जो है कि अब जैसे कोनो आदमी हार थकवा तो बात पूछे के का पानी पीने के का खाने, और तुम और उल्टी गाड़ी हो सुनाने लगो तो आदमी को दिमाग खराब ना हुए।
2: अच्छा और मैं दिन भर की काम कर रही हूँ, मैं कछु नहीं है, मैं को नहीं पूछे भज्जा ने एक बार पूछे कि मैं दिन भर कहाँ करत होंगी।
3: हाँ मुझे तो पतो है कि ते घूमे भी जात लालाजू के संग में, अब तो शांत रहिए, अगर रोज गाय अगर मुझे पतो चल गाओ फिर मैं शाम के बताऊँ तुम्हें।
2: हाँ मुझे काकन ने रोके, मुझे सब आराम से मिलत रहे सो मुझे काकन ने चार बातें करके,
3: अब ठीक है लालाजू तो है सो इनसे मंगा लीजिए जो कमी पड़े सो।
2: लालाजू देख लो तुमने अपने भज्जा को जी है इनके हाल।
4: अरे भौजी घर में ऐसा नहीं हो तना, तुम शांत हो जाओ करे भज्जा कहूँ गुस्सा हो तो तुम हो जाओ शांत, कहूँ बे हो जाओ करे शांत, ऐसे चलत घर बार।
2: हाँ तुम हो सो तुम हम डॉक्टर लगे होंगे, अब मैं बाजारे जा रही थी। हाँ
4: बाजार जाने?
2: हाँ
4: अरे बाजार ही तो मैं जा रहा हूँ, तो वो कल्लू पहुँच गया के मम्मी को मार रहा पापा है, मैं तो ऐसी सुनी से दोर भगत आओ तेरे रोटी नहीं खा पाई,
2: काले भी जा रहे थे मुझे तो सब्जी ले भी जाने लालाजू, चलो मैं तुम्हारे संगे।
4: अरे तनक मुझे राशन ले आने तो घर को, वह धनु कह रही थी कि वो चून बड़ा गो तो एक बोरी ले आने, चून मुनो वह तनक मसाले ले आने थे।
2: हाँ ठीक है तो फिर चलो, फिर मैं अभी चल रही संगे नहीं तो चलेंगे अभी तो जाने मंडी तक, ले लो लालाजी तुम ले लो हम ले लेते तेरे सब्जी।
4: अब भाजी मैं बगल की बापा सेट की दुकान से जो सौदा लेता हूँ तनक,
1: हाँ मसाले हाँ। लेने तो तनक
4: वो लेने तो आटो लेने तो
2: ले आओ हाँ, ले आओ ले आओ और मैं लाए ले खाऊंगी भज्जा जा सब्जी देखो का भाव दई। अच्छा आलू है का भाव दई? 10 रुपया किलो दे दू मैं ठेला में डाल दू डाल दू।
4: अरे भज्जा जल्दी कर, तनक भाजी और हमें चेक चेक करने लगे।

0: गावे नो टेम का दो, जल्दी दे दो, तनक मसाली दे दो। अब काहे में दे रहे? अरे पन्निया ने दे दो, तुमसे कितनी दार कही अपन घर से, हम कहा हमेशा झूले लिया है। पन्निया ने दे दो जल्दी, भौजी और हल्ला करे, ले आओ जल्दी रख दो, ले जो पैसा अपने। चलो भौजी ले ले हमने सब्जी।
1: का कह रहे लाला जी, अबे और रुकने कितने टाइम हो रुकने?
0: अरे लेबगा मसाले मसाले सब जो ले लो 5 किलो।
1: कल लेबगा है?
0: हो लेबगा है।
1: अच्छा हो, और काय में रख लो सामान?
0: अब जो पन्निया ने में रख लो काय में?
1: लाला जी मैंने कही थी बाद ना भी तुम्हें समझाई थी कि पन्नियन में अभी आधी दूर तक जाने से पूरी फट जाने, और दूसरी अपना जो कितना नुकसान हो रहा है पन्नियन से पर्यावरण को, मैंने समझाई थी तुम्हें।
0: अरे भौजी क्या करूँ, ख्याल नहीं रहता का के, तो घर से आते ना और जल्दी जल्दी में नहीं रहता।
1: जब लाला जी तुम ही नहीं करोगे तो फिर और को अपने और पड़ोस में तो को कर भी वालो नहीं है, बताओ। जब तुम ही निकाल को वो नहीं कर रहे, अब मैंने बांधना भी तुम्हें समझाई थी, आज भी कह रही, अब तो ध्यान रखियो कम से कम पन्नियन से। बाद में देखो तुम्हारी गज्जा ने खा ली थी पन्नी, मर गई थी बाकी नहीं मर गई थी।
0: हाँ जा तो यानी सांची कह रही, तो अब पक्के में ध्यान रखने आपकी राशे में, जब भी यहाँ तो झूला लेके।
1: हाँ तो लाला जू अब चलो चलेंगे, तो फिर ब्लैक टाइम होगा कहा कि मैं तो आज पूरा भज्जा लड़ पड़े, सो दिमाग के सो खराब है, वो टेंशन में है पूरा दिमाग।
0: अब तो भाई जी अब जा बात छोड़ते, लड़िए ना, आप शांत रहिए घर, हल्ला ना करिए।
1: देखे तुम याद रखियो अगली बार से पन्नी ना ले आज बाजार में,
0: अगली बार से तो झूला ही ले आऊ मैं।
2: हाँ मजा ही आगा राम धई, बेरू भौजी जो बातें अपन को बताती हैं एकदम सटीक रहती हैं न्यू, और एकदम सही बात बिल्कुल फिट बैठने वाली बात बताती हैं, बहुत अच्छी बात लगा था मैं उनकी।
3: सही कही कैसे उनने हमें, बेरू भौजी के नाटक में तीन चीजें हमने समझी हैंगी। एक तो जा समझी है कि सबसे पहले हमारे जो महिलाएं हैंगी उनको बचत करवो बहुत जरूरी है गो।
2: अच्छा तुम जो बताओ हमें एक बात, महिलाएं नहीं खो का जरूरी है गो?
3: महिलाओं को जासन जरूरी है।
2: हाँ।
3: यदि पुरुष उनके घर से बाहर चले गए हैंगे।
2: हाँ।
3: या कि तुम गांव में बैठे हुए चले गए हैंगे।

0: मेलन को अपने सशक्त करो जा रहा है, बहुत अच्छा माध्यम है। और संगे संगे जो समूह के माध्यम से बचत की बात होती हैगी और साथ में आपसी जो बातचीत होती हैगी, बास है अपने बहुत सारी हमारी बहनन को बहुत लाभ भी मिलो है गो। जो बात तो हम के वो सही बात है तुम्हारी के हमारी बहनें सशक्त हो रही और मजबूत हो रही हैं, लेकिन अबे भी कछु गांवन में जा प्रथा भी हैगी के वे जब तक उनके आदमी नहीं आएंगे तब तक वे घर से ना तो बाहर न करती हैंगी। और सब्जी की तो बात छोड़ो, वे उनके पास पैसा भी नहीं रहेंगे, बच्चन की पढ़ाई के लाने भी वे उन हमारे जो मुखिया रहेंगे उन पे आश्रित हो जाती हैं। तो हमें बचत हमारे जीवन में बहुत जरूरी हैगी।
1: तो देखो हम ही में जाके वो चाहूंगे कि बचत जानी गए सकत आपके केवल महिलाएं के लाने जरूरी है बल्कि सब जनन के लाने, हम सब के लाने बचत बहुत ज्यादा जरूरत हो देगी। हाँ तो दूसरी बात का सीखी,
0: दूसरी बात हमें जा सीखी कि सब्जी तो देखो इतनी महंगी हैगी
1: बिल्कुल है
0: और हमारे जो घर पे बहनें बैठी रहती हैंगी तो वे एक काम कर सकती हैं। जैसे अपन ने पहले किचन गार्डन नहीं बताओ तो उन्हों कि
1: हाँ
0: किचन गार्डन को कॉन्सेप्ट बताओ तो कि किचन गार्डन हमारे बहनें कैसे लगा सकत हैंगी अपनी घर में। तो बामे का हो तो एक तो बचत होते हैगी, बचत कैसी बचत होते है? जैसे पड़ोसी के पास गार्डन नहीं है या घर में आंगन नहीं है उनके पास, तो पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के यहाँ लगा के उनसे सब्जी ले सकते हैंगी। तो सब्जी का ऐसे बहुत महंगी रहतेगी, तो अगर छोटी छोटी हमने पौध ले आके हाट से पौध ले आके बाजार से पौध लगा के अपने आंगन घर आंगन में लगा दीगी, बासे अपने परिवार को भी खर्चा चलेगा, अपने पड़ोसियों को खर्चा चलेगा और अपन ताजी ताजी सब्जी अपन को मिलेगी।
1: जा तो आपने एनी नोनी बात कही हैगी कि अगर अपन घर में किचन गार्डन जैसी लगाऊ थेंगे तो जो छोटी छोटी सी चीजें रहती बहुत मामूली सी, जैसे कि अपन ने टमाटर लगा लाए, मिर्चें लगा लें, धना लगा लाए और का कहते हैं
0: भटा
1: भटा, हाँ भटा लगा लाए और मैं वही में एक दो गोभी लगा लूं,
0: हाँ
1: धीरे धीरे करके ऐसी चीजें अपन लगाते रहो अगर तो भी एक दिन आपको इतनो फायदा दे, इतनो फायदा दे। फायदा मतलब ऐसा नहीं है कि डलियन बांध दिया भेजे
0: हाँ
1: ऐसा फायदा के अपन को ताजी सब्जी घरे की मिलेगी वो बिना केमिकल वाली,
0: बिल्कुल सही
1: काहे के
0: कही।
1: बाजारन में जो मिल रही वह केमिकल वाली सब्जी मिल रही हैगी, तो अपन एकदम कतनिया के शुद्ध खाओ और स्वस्थ रहो,
0: सही बात
1: तो ऐसा अपन को महसूस भी होने लगे है गो। तो आप जो कॉन्सेप्ट जो है गो किचन गार्डन को वो भी आप अपना सकत हो।
0: और तीसरी बात हमने सुनी हैगी और अच्छी लगी हैगी कि भौजी बाजार में गई हती और उनने खूब मना करी कि भैया पॉलीथीन को इस्तेमाल हमें नहीं करने है गो। खासतौर पे हमने पहले भी शुरुआत में बताई थी कि काहे से पॉलीथीन को इस्तेमाल करवे से पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान है, जानवरों को नुकसान है और हमें आपको तो है ही गो जो नुकसान है, तो जी बात को हमें विशेष तौर पर ध्यान रखने है गो।
1: तो देखो जा तो बात आप सही कह रहे हैं, तीसरी बात जो आपने सीखी हैगी काहे कि पन्नी से अपन को खुद को नुकसान होते है गो, अपने ढोर बछे जो फिरत रहते हैं बेचारे, देखो वे तो काऊ से कह नहीं पा रहे हैंगे हैं, उन्हें तो जब भूख लगा थेगी सुबह तो पन्नी में बंदो मिला सामान सुबह पन्नी समेत खा जात, काहे कि भी गठान तो खोल नहीं सका थेगी।
0: सही बात
1: तो
0: है
1: एक तो हमोरन की खुद से गलती जा रहा थेगी इमें कि जो भी खाबे पीबे को सामान जब अपन बाहर फेंका थेंगे तो एक तो वो ऐसे ना फेंको बिल्कुल भी पन्नी में बांध के, खास तौर से काहे के गन्ना बच्चे जो हैंगे भी पन्नी उठा के पूरी खा ले उठेंगे, तो खाबे की चीज अगर हैगी तो आप खुले में ऐसी रखो कि आपको पता हो कि हाँ इतने जो डूर बच्चे रोज आउ थे वो और इतना ही वो खाबे के लाने खड़ो होते, तो एक बढ़िया सा पत्थर रख दो सो ऊपर आप वो खाबे को सामान रख दो और जिमे वो डूर बच्चे हुआ है वो खेओ अपनो चलो जाए, जो नैया के पन्नी में बांध के आपने फेंक दो सो बस वो तो पका है उखो तो खावे की वो है भूख है पेट में, जब भूख लगा तो कछु नहीं दिखाता है सो वो पन्नी समेत खा जाऊ थे। और दूसरा अपन को पर्यावरण से भी इससे काफी फायदा मिलेगा जब अपन पन्नी को इस्तेमाल कम करेंगे। देखो पहले की समय की अगर बात करें तो पहले अपने जो पुराने लोग हते जो दादा परदादा या नाना नानी हते हमेशा जब भी बाजारे जाते तो कहते ल्या बेटा वो थैला दीजिए बाजारे हुए आए, लेकिन अब वो चलन नैया अब का कहते के रंदो ऐसे ही खाली चले जा रहा है वो तीन सौ पन्नी इनमें डांग ले आए, तो अपने ही हो रहे हैं कितों ना कितों इन चीज को खराब कर रखेंगे, तो अपन को वो खराब नहीं करने हैं, अपन को कह नहीं रहे हम के संगे संगे जो भी ध्यान रखने के अपन को अगर खुली हवा में सांस लेने हैं गो तो अपने पर्यावरण को ध्यान अपन को रखने आए और अपन को ई के हिसाब से चलने आए ना कि पर्यावरण अपने हिसाब से चले गो।
0: बिल्कुल सही कही वैसा। और हमने तीन चीजें सीखी सो आपको हमने बता दी हैंगी और अब हमारे साथियों ने

0: काशी को है भी हमें बताएं कैसे हम हमारा समय भी उड़ो जा कार्यक्रम शुभ कल संजावे को तो उनने काशी को एगो भी हमें बता सकत हमारे जा नंबर पे।
1: साथ ही हमारा नंबर है 92 19 20 77 49।
0: और साथी रो आपके कार्यक्रम में जब हम आएंगे तो हम आपको पूछेंगे आपसे कि आपने हमारे जो कार्यक्रम हते उनमें आपने काशी को है वो तो जरूर शामिल हो हमारे कार्यक्रमन में अपने सुझाव जरूर दे होगे और संगे संगे आप हमें बता भी सकते हैं कि और कार्यक्रम में का अच्छो लगो और कौन विषय पर आपको बातचीत को सुनने हैं तो वह विषय को लेकर हम कार्यक्रम में हाजिर जरूर होंगे।
1: बिल्कुल, तो आप अपन चला थेंगे आज के कार्यक्रम से, फिर हुई मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लाने नमस्कार।
2: शुभ कल बदलती जलवायु के लिए।

0: कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष,
0: लेकर हाजिर हैं आपका कार्यक्रम हम होंगे कामयाब। श्रोताओं आज हम होंगे कामयाब में हम बात करेंगे व्यक्तित्व विकास की, कि जो हमारा व्यक्तित्व विकास है उसके लिए हम कुछ टिप्स आपके लिए लेकर आए हैं और जो बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं आपके लिए अगर आपने सही तरीके से उनका इस्तेमाल किया तो।
1: क्योंकि देखा जाता है कि जब तक आपका व्यक्तित्व विकास नहीं होगा तब तक आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसी जगह रहते हैं जहां पर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, यदि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका अच्छा है, बोलने का तरीका अच्छा है और क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये बातें अहम रहती हैं जब तक जब आप किसी बड़े इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर आप नए करियर की शुरुआत करते हैं। तो कुछ बातें हैं जो हमें बेहद जरूरी जानना है, क्योंकि देखा जाता है कि कैरियर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कुछ बातें रहती हैं व्यक्तित्व विकास के लिए। सरल परिभाषा में कहा जाता है कि व्यक्ति के आचरण, व्यवहार, शिक्षा, योग्यता, शालीनता, पहनावा, उदारता, त्याग,

0: क्षमा, बौद्धिकता जैसे तत्वों को अपनाकर जो अपनी छवि को औरों से अलग प्रस्तुत करता है, उसे ही व्यक्तित्व विकास कहा जाता है।
1: इसके साथ ही साथ जिंदगी के प्रत्येक क्षेत्र में यदि आप किसी को भी प्रभावित करना चाहते हैं तो आपको बेहतर प्रदर्शन करने होगा। इसके लिए आपको किसी को भी आकर्षित करने का हुनर आना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब आपके अंदर श्रेष्ठ गुणों का समावेश हो। अब हम आपको बताते हैं कि वह गुण या टिप्स कौन से हैं।
0: सबसे पहला होता है कि संतुलित एवं सुंदर आपका शरीर होना चाहिए। ये आपको बताता है, आपके व्यक्तित्व को पहचानता है, क्योंकि संतुलित शरीर से व्यक्ति की पहचान होती है, जिससे व्यक्ति के हाव भाव, चाल चलन, उठने बैठने और कार्य करने की क्रिया का पता चलता है। इसलिए शरीर हमेशा ऊर्जावान होना चाहिए तथा थकावट और आलस्य जैसे अवगुण आपके शरीर में नहीं होना चाहिए।
1: इसके बाद आपको शरीर की बनावट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जिम जाकर सिक्स पैक बनाएं, अपितु ना अधिक मोटा ना अधिक दुबला होना चाहिए। आप नियमित संतुलित आहार लेकर एवं नियमित व्यायाम करके संतुलित शरीर का विकास कर सकते हैं।
0: सुंदरता किसी को भी आकर्षित करने का केंद्र होती है। इसमें शरीर के काले और गोरे रंग का महत्व नहीं होता है। इसके लिए आपको शरीर के नाजुक अंगों जैसे आंख, बाल, नाखून, त्वचा आदि का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। इसके पश्चात साफ, स्वच्छ, कंफर्टेबल और फैशन के अनुसार कपड़े पहने, लेकिन फैशन की आड़ में फटे हुए और बेशर्मी वाले कपड़ों को परहेज करें, क्योंकि इससे आपका व्यक्तित्व नीचा होता है। आपको बता देना चाहते हैं, दूसरा गुण आपके अंदर उत्तम विचार होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी के सामने अपनी बात को रखते हैं तो आपके विचारों को देखा जाता है कि आपके विचार किस तरीके से हैं।
1: बिल्कुल, और विचारों से ताकतवर कोई और हथियार नहीं होता, यानी कि विचारों से ज्यादा ताकतवर कोई और दूसरा हथियार नहीं होता है। विचारों की वजह से ही व्यक्ति को नई दिशा मिलती है और यह कुछ भी करवा सकती है। अच्छे वातावरण में रहने से, अच्छी किताबें पढ़ने से, खुली जगह में वायु का सेवन करते रहने से सरलता से ही हमारे मन को अच्छे परिणाम मिलते हैं और वे परिणाम ही हमारे विचारों का निर्माण करते हैं।
0: इसके अलावा आपका विद्यालय उत्तम हो, जिससे आपको उत्तम शिक्षा मिलेगी और आप में उत्तम विचारों का समावेश होगा, और साथ साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए विचारों का अहम योगदान रहता है। इसके लिए आपके विचार अच्छे होना चाहिए। जब आपके विचार अच्छे होंगे तो सामने वाला या इंटरव्यू लेने वाला आपसे प्रभावित होगा और आपके आत्मविश्वास को जगाएगा। आत्मविश्वास का होना ये भी बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है और एक अच्छी बात होती है कि आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि हम ये काम को कर लेंगे।
1: बिल्कुल, यदि आपके अंदर किसी काम में पूर्ण योग्यता होने के बावजूद भी उस काम को लेकर से इनकार कर देता है, या आपको किसी विषय का पर्याप्त ज्ञान होने के बाद भी उसे किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हो, इसका प्रमुख कारण है आत्मविश्वास की कमी। जी हाँ श्रोताओं, इसलिए आत्मविश्वास हासिल करने के लिए अपने गुण अवगुण का विश्लेषण कर अपने व्यक्तित्व के अंदर मौजूद कमियों को दूर करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप अधिक शर्मीले हैं, हीन भावना से ग्रस्त हैं, अभिमानी हैं, या आप में किसी का भय है, तो आपको इन कमियों को जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। जबकि किसी इंसान के अंदर मौजूद गुणों से ही उसका व्यक्तित्व बनता है, इसमें आत्मविश्वास बहुत ही आवश्यक है। युवा पीढ़ी में इस गुण का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका भविष्य सामने होता है। अतः आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपके भीतर आत्मसम्मान, प्रतियोगिता में भाग लेना जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए, जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बेहतर है।
0: दोस्तों, और भी बातें हैं जो आपके व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे कि विनम्रता अपनाएं, बातचीत की कला, सुनना या कम बोलना सीखें। ये सारी बातचीत जो रहती है आपके व्यक्तित्व को निखारती है। ये बातचीत आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत जरूरी रहती है। मित्रों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले

0: हम एक अच्छे से लोकगीत को सुन लेते हैं, इसके बाद बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे और भी व्यक्तित्व विकास के जो टिप्स हैं, व्यक्तित्व विकास के गुण होते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में।
1: तो आइए श्रोताओं सुनते हैं यहाँ पर एक बढ़िया सा लोकगीत।

0: एक बार फिर से स्वागत है श्रोताओं, कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में, जहां पर हम बात कर रहे हैं व्यक्तित्व विकास की। अभी हमने बात की श्रोताओं के आत्मविश्वास होना चाहिए हमें खुद पर। आगे हम बात करेंगे कि विनम्रता अपनाएं। बिल्कुल श्रोताओं, आपकी वाणी में मधुरता का स्वर होना चाहिए, जिससे आप अनगिनत दोस्त बना सकते हैं। इसके ठीक उल्टा अनगिनत दुश्मन भी आप, इसलिए आप कभी भी अपनी शिक्षा प्रतिभा योग्यता को ओढ़ते हुए किसी से बात ना करें, अपितु ऐसे बने रहें कि हर कोई आपसे मिलने की एवं बात करने की चाह रखे। इसके साथ ही साथ आप गुस्से पर काबू रखें और किसी कमजोर व्यक्ति का मजाक ना बनाएं। मजाक उसी का उड़ाने में मजा है जो अपने को आपसे ज्यादा ताकतवर समझता है। इसी गुण से व्यक्तित्व विकास में इजाफा होता है।
1: ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि विनम्रता अपनाए के साथ साथ हमें बातचीत की कला भी होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी के सामने बातचीत करते हैं तभी आपका व्यक्तित्व पहचानता है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो आप किसी साधारण व्यक्ति से बात कर रहे हैं या किसी पोस्ट ग्रेजुएशन व्यक्ति से आपको बातचीत करने के दौरान बार बार आंखें मटकाना, शर्माना, अटकना और मुख मुद्रा बिगाड़ने से बचना चाहिए, और अपनी बॉडी लैंग्वेज का उपयोग कर नेत्र संपर्क बनाए रखना चाहिए। बहुत बड़ी बातचीत होती है, ये एक कला होती है व्यक्तित्व विकास की, ये कला होती है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, क्योंकि बातचीत के वक्त आपकी एक निश्चल मनमोहक प्यारी मुस्कान किसी भी व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव डालती है। लेकिन आपकी यह मुस्कान नकली या बनावटी ना लगे, यह नेचुरल रूप से शरीर के अंदर से आनी चाहिए। आपकी एक मुस्कान सामने वाले व्यक्ति के अंदर आपकी सैकड़ों तारीफें बयां कर देती हैं, इसलिए आप मुस्कुराने का प्रयत्न कीजिए। इसके अलावा आप अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों से मिलते हैं और कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। इसे रचनात्मक कहते हैं। और आप शायरी, लघु कथा, घटना, दुर्घटना, कहावत आदि से अपनी बातचीत में रचनात्मकता शामिल कर बेहतर प्रभाव आप डाल सकते हैं।
0: बिल्कुल, ऐसे और कई सारे ऐसे टिप्स हैं श्रोताओं, जो आप सबके लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाले हैं। एवं यहाँ पर हम बात करेंगे सुनना और कम बोलना सीखे, क्योंकि कई बार होता क्या है श्रोताओं के, हम बोलते जाते हैं, हम सामने वाले की बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। तो यहाँ पर यह बहुत अच्छी बात है कि हमें सुनने की भी आदत डालनी चाहिए। यह वास्तविकता हमारी जिंदगी से करीब करीब समाप्त हो गई है। आज हम किसी व्यक्ति की बात कम सुनते हैं पर ज्यादा बोलते हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो उसकी बातों पर पूरा फोकस करें, और जिस विषय पर चर्चा हो रही हो उससे संबंधित अगर आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछें।
1: वार्तालाप के दौरान आप बीच में दखल ना दें और ना ही रुकावट बने, समझदारी से बात करें एवं बीच बीच में आप अपना सिर हिलाएं और जी हाँ अवश्य कहें, जिससे सामने वाले व्यक्ति को यह महसूस होना चाहिए कि आप उस व्यक्ति की बात गंभीरता से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। हालांकि आप जितना हो सके चुप रहें, क्योंकि ज्यादा बोलने वाले और खुद की तारीफ करने वाले व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है। आप एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति बनिए, जो जरूरत के वक्त अपनी बात को व्यक्त कर सके। चुप रहने वाले व्यक्ति या कम बोलने वाले व्यक्ति से हमेशा लोग बातचीत करने के लिए उत्सुक रहते हैं, और इसी वजह से कोई भी व्यक्ति बेहद आकर्षित होकर उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहता है जो व्यक्तित्व विकास के लिए एक अच्छा गुण रखता है। तो ये बातें रहती हैं जो आपके व्यक्तित्व विकास को निखारने में बहुत ज्यादा जरूरी रहती हैं, क्योंकि इन बातों के बारे में आप यदि आप सोचते हैं, ये बातें आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। आप सामने वाले को माफ करना या माफी मांगना सीखें, ये भी एक तो व्यक्तित्व विकास का एक पहलू रहता है। इसका भी हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी अपमानित आपको करता है, अपशब्द कहता है, बुरा व्यवहार करता है, तो आपके मन में उस व्यक्ति के लिए नफरत पैदा हो जाती है। ऐसा होना ही नेचुरल है। लेकिन कुछ समय बाद उसको अपनी गलती का एहसास होता है, वह आपसे माफी मांगने आता है और आप उसे मुंह मत मोड़िए और उसे तुरंत माफ कर दीजिए, क्योंकि वही व्यक्ति माफ करता है जो अपने तन मन से घृणा, बुराई, कलेश को दूर करना चाहता है, अपने दिल में पवित्र करना चाहता है। इसके ठीक उल्टा, यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो आप माफी मांगने से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि जिसमें सीखने की असीमित क्षमताएं होती हैं वही व्यक्ति माफी मांगता है, और माफी मांगने से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है जो सर्वोच्च व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ज्यादा अहम रहता है।
0: बिल्कुल सही कहा है आपने। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके द्वारा या किसी और के द्वारा कोई गलती हुई है और अगर सामने वाला आपसे माफी मांगने के लिए आ रहा है तो उसे माफ भी कर दें। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप भी उससे माफी मांग सकते हैं। ये हमारे एक व्यक्तित्व विकास की बहुत अच्छी कड़ी होती है जिस पर हम कायम रह सकते हैं। आगे अगर हम बात करें सकारात्मक नजरिया, यानी कि पॉजिटिव सोच हमेशा बना के रखें। सकारात्मक नजरिए से आशा यह है कि इस जीवन में अपने कर्तव्यों, निर्णयों, संकटों, उलझनों, रुकावटों, संघर्षों, दैनिक व्यवहारों तथा अन्य किसी भी कार्य में कामयाब होने के लिए आपका नजरिया सकारात्मक होना चाहिए। अगर आप निराशा से आशा प्राप्त करने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं तथा जिंदगी की समस्याओं से विचलित ना होकर समस्याओं का समाधान करते हैं, हर बुराई में अच्छाई की तलाश करते हैं, तो आपका नजरिया सकारात्मक है। इसके ठीक उल्टा अगर जाएंगे तो आप नकारात्मक नजरिए का शिकार होंगे, जो आपके वर्तमान एवं भविष्य के लिए खतरनाक है। नजरिया बुरा होने पर आपको सिर्फ कुछ समय के लिए खुशी मिलती है तथा लंबी खुशी के लिए आपको सकारात्मक नजरिया विकसित करना होगा, जिससे आप लंबे समय तक खुद को खुश रख सकते हैं और यही खुशी आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में निखार लाएगी।
1: ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि सकारात्मक आपका नजरिया है, यानी पॉजिटिव आउटलुक है आपका, तो आप दूसरों को खुश रख सकते हैं और उनकी खुशी में ही आपकी खुशी रहती है। इससे आपका ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, यानी व्यक्तित्व जो विकास रहता है वो उसमें एक अहम कड़ी मिलती है। सीखना बंद तो जीतना बंद, यानी आप पता होगा, क्योंकि व्यक्तित्व विकास में ये होना बहुत जरूरी है। आपने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी के शो कौन बनेगा करोड़पति को सुना ही होगा आपने। सीखना बंद तो जितना बंद, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सीखता वही है जिसमें जीतने की उमंग होती है और जिसका दिल जवान होता है, जबकि सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। सीखना कभी ना खत्म होने की प्रक्रिया है, इसलिए सीखने के दौरान गलतियां ना करें और दूसरों की गलतियों से सीखें और अपनी गलतियों में सुधार करें।
0: इसके साथ साथ लगातार सीखने की अनवरत कला से ही आप नए नए लोगों से मिलते हैं, नई नई जानकारियां हासिल करते हैं और इसी कला से आपका व्यक्तित्व विकास होता है।
1: और आखिरी है, हम आपको बता देना चाहते हैं, ये कार में योग्यता, ये भी आपके व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार एक निश्चय विषय या क्षेत्र का चुनाव कर उस पर अग्रणित रहें और आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करें। जिस विषय को आपने चुना है, सबसे पहले उसमें गहराई तक जाएं, उसके बारे में जितना ज्यादा हो सके ज्ञान प्राप्त करें। इससे हकीकत में यह होगा कि मान लीजिए अगर आपसे किसी ने आपके कार्य से संबंधित कुछ सवाल किए, लेकिन आप उन सवालों का जवाब सही ढंग से नहीं दे पा रहे हैं, तो इससे आपका व्यक्तित्व लो होता है, यानी कमजोर होता है। अतः आप अपने काम में होनहार बनिए। इसके अलावा आपको देश विदेश के बारे में मनोरंजन एवं ज्ञानपूर्ण जानकारी रखना अन्य लोगों के मध्य आपको लोकप्रिय बनाता है।
0: आगे हम बात करेंगे अगर निष्कर्ष की, तो इस बात में हम आपको जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक में आने वाले हर वह खास टिप्स बताते हैं जिससे आप अपनी कमियों को आसानी से दूर कर सकते हैं।
1: यदि आपने अपने जीवन में यह खास टिप्स नियमित आधार से अपनी दिनचर्या में उतार लिए, तो यकीनन आप खास पर्सनालिटी डेवलपमेंट के धनी बन जाएंगे। आशा करते हैं कि आपको यह लेख पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स, व्यक्तित्व विकास के टिप्स आपको बेहद पसंद आए होंगे। आने वाले समय में हम आपको और भी व्यक्तित्व विकास से जुड़ी बातचीत हम लेकर आएंगे। साथियों, इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने का। तो आपको ये जानकारी हम जो दे रहे थे व्यक्तित्व विकास के बारे में, जो आपके लिए बहुत जरूरी रहती है जब आप किसी के पास बैठते हैं या इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो व्यक्तित्व विकास होना बहुत जरूरी रहता है हमारे युवा साथियों के लिए।
0: बिल्कुल, तो हमें उम्मीद है कि जो भी टिप्स हमने आप सबको बताए हैं उन पर आप काम करेंगे, यानी कि अपने व्यक्तित्व विकास में उनका उपयोग जरूर आप करेंगे, तो आपके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा। अगर साथियों आप इन सब का उपयोग कर रहे हैं या फिर आपने इस कार्यक्रम को सुनकर थोड़ा सा भी अपने व्यक्तित्व में थोड़ा सा बदलाव किया है तो हमें जरूर बताइएगा फोन के माध्यम से, या फिर आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सवाल हमसे करना चाहते हैं तो भी आप हमारे साथ जरूर कार्यक्रम में जुड़ के और सवाल पूछ सकते हैं। तो इसके लिए हमारा नंबर है
1: 9425147726।
0: श्रोताओं, जब कभी ये नंबर अगर ना लगे तो आप व्हाट्सएप पर इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर ये कॉल लग सकता है। और आपको एक और बात बता देना चाहते हैं, हर कार्यक्रम में जो हम बता रहे हैं कि अब अपना रेडियो बुंदेलखंड सिर्फ अपने रेडियो सेट पर ही सीमित नहीं है, अब ये ऐप के माध्यम से हर जगह उपलब्ध हो चुका है। तो हमारे और भी जो श्रोता साथी हैं जिनको रेडियो बुंदेलखंड सुनने में परेशानी होती है, उनको आप इस ऐप की जानकारी जरूर दीजिएगा ताकि वो आसानी से रेडियो बुंदेलखंड को अपने क्षेत्र में सुन सके।
1: तो अब हमारा जाने का समय होता है, आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात।
0: तब तक के लिए नमस्कार।
1: और चलते चलते आप सुनो इस प्यारे से लोकगीत को।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाली सभी सखियों को हम यानी कि वर्षा दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं और साथ में हमारे सखियों को बता देना चाहते हैं कि हम उनका पसंदीदा जो कार्यक्रम है हेलो सहेली वो लेकर आ गए हैं। और आप इस समय अपने अपने आसपास की जो भी बहनें हैं उनको भी बिठा लीजिए ताकि उनको भी पता चले कि आपकी आवाज जो है वो रेडियो पर आ रही है, और रेडियो पर आवाज अगर आ रही है आपके पसंद का गीत भी आएगा। तो बिल्कुल सखियों, आपको बता देना चाहते हैं कि इस

0: आप शामिल होना चाहती हैं और अपने मनपसंद लोकगीत की फरमाइश करना चाहती हैं, तो हमें शुक्रवार के दिन कॉल करें हमारे नंबर 9425-14-17-26 पर, और कॉल करने के बाद आप अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकती हैं, जिसको आप शनिवार को सुन सकती हैं। तो आइए, हमारे साथ कुछ सखियां हैं जिन्होंने अपनी फरमाइश करी है, और सुनते हैं उनकी मनपसंद फरमाइश को। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, को बोल रही?
1: पार्वती वंश का सगनपुरा से।
0: बिल्कुल पार्वती जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। बताओ का क्या बचाती हो?
1: हम देखते हो क्या दीदी का, हमें एक वो सुना दो एक गीत।
0: हाँ, कौन सा सुना दे?
1: सुनने खेल जा भी मैं टुंगी नगर जावे भाई दीवानी बारी हमारी जावे
0: संध्या सरगम को है वो। हाँ बिल्कुल, ये नहीं नोना, हम जरूर सुनवा दें आपको। और बताओ पार्वती जी, प्रोग्राम कैसे लग रहा है रेडियो के?
1: प्रोग्राम बहुत अच्छे लग रहा है दीदी।
0: तो ठीक है पार्वती जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपको जरूर सुनवा रहे हैं आपकी पसंद को जो लोकगीत। ठीक है
1: दीदी, सुना।

0: सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: का नाम
1: पान कुआ
0: कितने से बोल रही
1: मस्तापुर से।
0: अच्छा पान कुआ जी, तो मस्तापुर में क्या हो रहा है आजकल?
1: आज लोकगीत अपनी पसंद सुना रही।
0: ठीक है, तो हम आपको जो सुनवा रहे हैं अपनी पसंद को लोकगीत। ठीक है,
1: हाँ
0: नमस्कार।

0: हेलो सहेली,
1: को बोल रही?
0: उमा देवी बोल रहा है मस्ता पैसे।
1: ठीक है तो आज बताओ कौन सा लोग सुनने आपको?
0: हमें तू माशाल्लाह तो मज्जा।
1: अरे वाह क्या बात है, तू
0: पंचांगेत और आनो। हाँ वही लोग सुनने में
1: बहुत बढ़िया, तो हम आपको जरूर सुनवाए जो लोग। ठीक है
0: नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इबेरा अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। और दोस्तों, जैसे कार्यक्रम को समय भाव है सो हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम छिरिया बाड़ा। जी हाँ दोस्तों, सो साथियों, छिरिया बाड़ा कार्यक्रम में अपन बात करत हैं खेती किसानी के संगे संगे पशुपालन की। सो दोस्तों, आज अपन ई कार्यक्रम में पशुपालन की नस्लन को और पशुअन के पोषण पे उनके आहार पे अपन बातचीत करें। दोस्तों बात करें पशु आहार शब्द, जैसे कि नाम से ही पता चल जाता के पशु की बात हो रही है, और पशु आहार यानी कि पशुओं की 24 घंटे में दी जाने वाली आहार, ऐसा आहार जो पशुओं को आवश्यक पोषक तत्वों प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट खनिज लवण विटामिन युक्त का उच्च अनुपात और उचित मात्रा में दी जाने वाली आहार, जो पशु की बढ़वार स्वास्थ्य अधिक दुग्ध देने में उत्तम क्षमता बनाए रखें। सो दोस्तों, पशुओं के लाने अपने आहार पे आगे भी बात करें और उनकी नस्ल पर बात करें। सो ये बातन के संगे संगे आप पहला एक बढ़िया से गीत को सुन लेते फिर आगे कार्यक्रम में। जी गीत को गा रहे हैं रामाधीन आर और रेखा राजी।

लाओ मोए कंगना जर्सी पहरे देवरानी। देखो कितना बढ़िया जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है, गीत को गा रहे थे रामाधीन आर और रेखा राज जी। अब दोस्तों अपन चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। सो दोस्तों आज के समय में पशुपालन एक बहुत अच्छी उभरता हुआ व्यवसाय है। जी हाँ, पशुपालन भी कृषि व्यवसाय की एक शाखा है जिसमें कई प्रकार के पशुओं को उनके दूध व अंडे व अन्य उत्पादों के लिए पाला जाता है। पशुपालन के लिए आपको पशुपालन की जानकारी होना अति आवश्यक है। यहाँ पर आप जानेंगे कुछ टिप्स जिसे आप पशुपालन जैसे कि भैंस मुर्गी भेड़ बकरी पालन आदि अच्छे से कर सके, अधिक मुनाफा कमा सके। सो दोस्तों अपन सबसे पहला अपने पशु की नस्ल को ध्यान से चुने। जी हाँ, अगर अपन कोनो सो भी पशु पाल रहे तो उनकी सबसे पहला नस्ल को ध्यान में रखें। खास तौर पर भैंस और बकरी पालन के व्यवसाय में जहां आपको पशु का दुग्ध व मांस बेचकर मुनाफा होता है, आपको अपने पशु की नस्ल का चुनाव काफी ध्यान से करना चाहिए। हर नस्ल का पशु अच्छा एवं ज्यादा दूध नहीं दे सकता, इसलिए आप पशु की नस्ल चुनते समय सावधानी बरतें। सो अपने पशु को अच्छे पोषण वाला आहार ही दें। अगर आप भी पशुपालन व्यवसाय से जुड़ने का मन बना रहे हैं तो आपको यह बात समझनी चाहिए कि यदि आप अपने पशु को अच्छा चारा व दाना पानी देते हैं तो उससे न केवल उसकी सेहत अच्छी रहती है बल्कि पशु की उत्पादक क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है। पशुपालन करते समय आप अपने पशु को सही मात्रा में पोषण वाला आहार ही खिलाएं, जिससे आपके पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपको मुनाफा भी अधिक प्राप्त होगा। अब दोस्तों बात आती है कि अपने पशु का आवास स्वच्छ रखें। जी हाँ, अपने पशु का जो आवास है उसे साफ और स्वच्छ रखें। पशु का आवास जितना अधिक स्वच्छ होगा उतना ही आपके पशु को बीमारी का खतरा कम रहता है। पशुओं को नियमित रूप से नहलाएं और उनके आवास के लिए किसी ऊंची जगह का चयन करें जिससे बारिश एवं नालियों का पानी मलमूत्र इत्यादि से वह बाहर रह सके। आपके पशु के आवास में कम से कम 2 से 3 जगह से अच्छी धूप आनी चाहिए। आवास में धूप के आने से न केवल वहां के कीटाणु मरते हैं बल्कि आपके पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। पशु के लिए पानी की सुविधा। पशु आवास में पशु के लिए पानी एवं खाने की उपलब्धता का भी ध्यान रखें। डेयरी के कामों में वैसे भी पानी की काफी जरूरत होती है और खास तौर पर गर्मी के मौसम में आपको पशु के लिए पानी उचित मात्रा में जरूर रखना चाहिए। पशु के स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखें। पशुपालन में अपने पशु

के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पशुपालन में सबसे जरूरी बात यह होती है कि आप अपने पशु को सही समय आने पर उसे सभी आवश्यक टीके लगवाएं, उसको लू लगने से बचाएं, चारा पर्याप्त मात्रा में दें ताकि उसका स्वास्थ्य ठीक बना रहे। पशु की नियमित रूप से डॉक्टरों से जांच कराते रहें। अगर आपका पशु कभी बीमार होता है या आपको वह कुछ सुस्त दिखाई देता है तो तुरंत उसे जानवरों के डॉक्टर को दिखाएं। ऐसा हो सकता है कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो। कभी भी जानवर के बीमार होने पर खुद उसका इलाज करने की कोशिश ना करें, यह आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अपने पशु को अच्छा मुनाफा होने पर ही बेचें। अपने पशु को बेचने के लिए सही समय आने का इंतजार करें। अच्छी नस्ल वाले पशु को सही समय आने पर काफी अच्छे दामों में बेचा जा सकता है। जैसे कि अगर आप बकरी पालन करते हैं तो बकरी ईद के समय पर अपनी बकरी को अच्छे मुनाफे पर भी बेच सकते हैं। पशु उत्पादों में मिलावट ना करें। अगर आप बाजार में पशु का दूध बेचना चाहते हैं तो आपको काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है, पर अगर आप अपने पशु उत्पाद में पानी या किसी और चीज की मिलावट करेंगे तो वह आपके व्यवसाय के लिए हानिकारक हो सकता है। पशु उत्पाद में मिलावट करने से आपका मुनाफा तो बढ़ जाता है, लेकिन मिलावट करने पर आपके ग्राहक आपके उत्पाद को नापसंद करने लगते हैं व आपके खिलाफ शिकायत भी हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अगर आप सघन पशुपालन या आश पशुपालन करना चाहते हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी उचित ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आप जानवरों से होने वाले रोगों के शिकार बन सकते हैं। टीबी जैसे रोगों से एक उदाहरण है। जानवरों के मल में पैदा होने वाले बैक्टीरिया और उनमें बैठने वाली मक्खियां आपको बहुत बीमार कर सकते हैं। पशुपालन की सरकारी सेवाओं का भी लाभ उठाएं। सरकार की तरफ से कृषि उद्धार के लिए किसान हेल्पलाइन जैसी कई सेवाएं शुरू की गई हैं। आप इन सेवाओं का लाभ अपनी भाषा में मुफ्त उठा सकते हैं। यह सुविधा 24 घंटा सातों दिन चालू रहती है। तो कभी अगर आपको पशुपालन से संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो देर किए बिना किसान हेल्पलाइन पे आप कॉल कर सकते हैं। किसान हेल्पलाइन नंबर है 1551 या 1800। सो देखो दोस्तों, जो आपने पशुपालन से संबंधित जानकारी जानी है, अब एक क्रम में अपन एक गीत को सुनत और गीत को आनंद ले। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। आओ दोस्तों सुनत ही गीत को जी गा रहे हैं राजकुमार त्यागी जी और अमूल अहरवाल।

बिल्कुल दोस्तों, जो 3 दिन आपको मिला रही उड़ जो है हंस अकेला, देखो कितना अच्छा जो गीत अपन सब जनन ने सुनो, गीत को आनंद लो। ये गीत खुंगा रहती अमूल अहरवाल जी और राजकुमार त्यागी जी। अब दोस्तों आज के ये कार्यक्रम छिड़कियावाड़ा से आपके दोस्त मातृदिन भैया को जाबे को समय हो गए है, सो हमें दो ये कार्यक्रम से जाबे की अनुमति। अपनी तपनी पर हुई मुलाकात ये कार्यक्रम में एक बेरा पे, जब तक के लाने नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इवीरा अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जनन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और दोस्तों, कार्यक्रम विधा बुंदेली में अपन एक विधा को सुनते हैं और वो विधा को आनंद लेते हैं। सो दोस्तों, आज के अपने कार्यक्रम विधा बुंदेली में अपन सुने विधा श्रृंगार गीत को और श्रृंगार गीतन को आनंद ले हैं। दोस्तों, जो श्रृंगार गीत एक बहुत ही अच्छी विधा है जिमें नारी के श्रृंगार को वर्णन करो जात। सो दोस्तों, आप हम आप सब जन को सुनाओ थे जो श्रृंगार गीत कौन प्रकार से गाया जाते हैं। सो सबसे पहले गीत सुनाते हैं जी, ये गा रहे हैं रामकुमार प्रजापति जी। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में।
1: हाँ, तो आप एक श्रृंगार सुना रहे हैं। बुंदेलखंड में जब श्रृंगार करके नायिका निकले थे, देखने में मन ललचात के देखती रहे। और हम जब अपने घर से मतलब श्रीमती खन लुआ के आ रहे थे, जैसे लुआ के आए तो हमारे मित्र मिल गए और उनने पूछी के तीन चार जने आ रही, उनमें से कौन है तुम्हारी धर्म पत्नी। सामने कही

बोले कि ऐसे में नहीं आ रही समझ में, बताओ तुम तो इस तक हमने कहीं देखो श्रृंगार की बात है कि कन्हर जे

को लेके देखो, ऐसे में भी समझ में नहीं आ रहा हुआ, कर्दोनी दो जनी पे रहे। हमने की नहीं जीने बना दही।

जा बताओ पीली साड़ी वाली यहाँ, हमने की नहीं, बोले नीली साड़ी वाली, बोले नहीं, बोले फिर कौन, हमने की है, अरे गंजले ठाकुर दई हम ही खा, गंजले ठाकुर दई हम ही खा।

0: बिल्कुल दोस्तों, मटकत आ रही लटकत आ रही कमर में कर धोनी मोरी बेला कली। देखो दोस्तों कितनों प्यारो जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, जो सिंगार गीत है, और दोस्तों ये गीत को गा रहे थे भैया राम कुमार प्रजापति जी। अब दोस्तों आ सुनते हैं अगले साथी इनके गायब है सिंगार गीत को।
1: नई नई दुल्हन सज गई है न घुंघटा में।

दोस्तों, गोरे हैं गाल दुई होंठ लाल, रेशम से वाल कारे कारे। देखो कितना प्यारा जो श्रृंगार गीत अपन सब जनों ने सुनो है, इस श्रृंगार गीत को आनंद लो है, ई गीत को गा रहे थे रामाधीन आर जी। सो दोस्तों, रामाधीन भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो ने तो अच्छो बढ़िया श्रृंगार गीत गा के अपन सब जन को सुनाओ है। अब एक क्रम में फिर से सुनते हैं अगले साथियों के गाय भाई श्रृंगार गीत को और लेते हैं उनके गीत को आनंद। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

काले लाल श्रृंगार है, श्रृंगार बहुत से देखे हैं सुने हैं आपने, जो तो लाल है केवल काय के लाल लाल चोली और चूनर है लाल, लाल लाल चोली और चूनर है लाल, लाल लाल साया पे, लाल लाल साया

हर पावन माहुर जो लगो लाल लाल, हर पावन माहुर जो लगो लाल लाल, और लाल लाल चुगटन में।

लागो है नीको जो लाल बूंदा। देखो कितना प्यारो जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, श्रृंगार गीत को आनंद लो है। इस श्रृंगार गीत को गा रहे थे भैया राम कुमार प्रजापति जी। अब दोस्तों राम कुमार भैया जी के गीत के बाद आप फिर से सुनते हैं अगले साथी के गायब है गीत को।

बिल्कुल दोस्तों, भौजी सजी मूर मोटर सी करसो लव सिंगार मनोरंजन लिभोरा। देखो कितना प्यारा जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, इस सिंगार गीत को आनंद लो है। इस सिंगार गीत को गा रहे थे भैया राम सुमन अहरवार जी। सो आओ दोस्तों, अब फैशन सुनते हैं अगले साथी इनके गाय भाई गीत को। अरे जा गोरी

बिल्कुल दोस्तों, जागोरी बुंदेलखंड की अजब करे सिंगार, लगत देखत रहिए। तो देखो कितनो प्यारो जो सिंगार गीत अपन सब जनन ने सुनो है, इस सिंगार गीत को आनंद लव है। दोस्तों ये गीत को गा रहे थे भैया खूबचंद कुशवाहा जी। आप दोस्तों खूबचंद कुशवाहा जी के गीत के बाद आप फिर से सुनते हैं अगले साथियों के गाय भाई गीत को और लेते उनके गीत को आनंद। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

एक एक कजरवा कारो के गोरी धना जादू सो डारो। देखो कितना प्यारो जो श्रृंगार गीत अपन सब जनन ने सुनो है, इको आनंद लो है। अब दोस्तों ये गीत के संगे संगे हम बता देवे की गीत को गा रहे थे भैया रामसुमन अहरवार जी। अब दोस्तों ये कार्यक्रम से अपने दोस्त माता दीन भैया को अब जाबे को समय सो हो रहा है। सो दोस्तों अपने दोस्त माता दीन भैया को कार्यक्रम से जाबे की अनुमति अपनी तपनी फिर हुई है मुलाकात है कार्यक्रम में ये बेरा पे। अब अपने माता दीन भैया को जाबे की अनुमति। नमस्कार।

सावन करो जात ससारे चैन जिया में नैया ओ नैनन धार लगी असुंगन की रोक

0: दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के लिए।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मोर नाम मोनिता रानी दास, थाना बागबर, डिस्ट्रिक्ट बरपेटा। तो हमारे धान खेती बालू खेती नष्ट है, नष्ट होने तो जो पैसा दे तो ना हमारे लाभ है, बाकी खेतियों को लेते लाभ तो पाने आम जन पालू
2: खरीफ फसल बीमार बाबे शीघ्र पंजीकरण कराओ।
3: बैंक शाखा बीमा कंपनी कृषि ऋण समिति जनसेवा केंद्र सहित जोगाजोग करक।
2: फसल बीमा सम्बन्धे तथ्य पातिर बाबे हेल्पलाइन नंबर 144 कॉल करक।

गलियों गलियों फिरता हूँ, कब से जब से इस हसीना ने, जब से इस हसीना ने मुझको आँख मारी।

0: जे देवी है तो हम भी पुजारी से कम नहीं है। और पुजारी हुए जब तो अगरबत्ती खोन से देवी के लगा प्रसन्न हुई है देवी काय और कहीं ना
1: एक तरफ ये देवी है दूजा मैं पुजारी हूँ
0: और

0: प्यार तुमसे प्यार ना करे, और जब प्यार तुमसे प्यार करे तो जनाब तुम प्यार से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि प्यार किसी और प्यार से प्यार ना करे।
1: जवाब सत्य कहना है, हमने इतना प्यार करो मालूम कितना।

0: रह दो ना,
1: भरो इंतजार आएगा वो दिन, थोड़ी देर है
0: कब आएगा। अरे अरे अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे

अब करो भरोसो हर पे, अब करो भरोसो हर पे, करो भरोसो हर पे, ना करियो अपने घर पे। अब करो भरोसो हर पे, करियो ना अपने घर पे। तोरी पीर भू लगे हैं पार, तोरी हरी लगे हैं पार, मतलब की दुनिया सार, तोरी हरी।

0: शुभ कर्म। बदलती जलवायु के लिए तैयार हम।
1: राम राम मनीष भज्जा, कितने चले जा रहे?
2: हम कितो नहीं जा रहा, वैसे तो ये थे और हम सोच रहे थे कि हम अपने साथियों से एक मुलाकात कर ले में।
1: हाँ।
2: तो हम अपने साथियों से सबसे पहले राम राम करण चाहतेंगे और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे कार्यक्रम को सुनत
1: है।
2: हाँ,
1: अच्छा अच्छा,
2: कैसे जो देख रहा है कि कार्यक्रम तो सुनत हैंगे हमारे साथी, लेकिन हमें एक शिकायत है कि साथियों से।
1: अरे तुम्हें साथियों से शिकायत है?
2: हाँ, फोन नहीं करा थे।
1: अरे तो घबरावे वाली बात नहीं है मनीष भैया। देखो तुम का है कि जल्दी भावो खो जाऊ तई, और तुम्हें जहाँ लगत के वो एक कहावत है ना, तुरंत दान महाकल्याण। सो तुम सोचत के अब हाल हमने प्रोग्राम चला हुए को और अब हाल अपने श्रोता साथियों के फोन आ जावे।
2: हाँ।

0: चीज सुनी होते। देखो तुम्हें अगर हम ये बात की खुशी एक बता देवे कि अपनो जो प्रोग्राम पहले का हो तो किसे रेडियो पे आते है, सो रेडियो पे ट्यून करते आदमी उनको कितनी परेशानी होती, लोग बाग सुना थे लेकिन फिर भी मेहनत करके पहाड़ियन पे चढ़ के पेड़न पे लगा के एंटीना। लेकिन अब का है ऐप से भी सुनते ही। और सबसे अच्छी बात जो हम बता दे बे कि पहले अपन और इनकी जो पोस्टें जाऊती हती प्रोग्राम की जानकारी जब देते सो उमे कमाई लाइक आते, जो लाइक करे ना पसंद करते जो को सो उनकी संख्या जो हती कम हती। लेकिन अब अपन देखो तो उनकी संख्या बिलात बढ़ गई।
1: तो तुम्हारा कहवे को जो मतलब के आदमी अब हमारे श्रोता साथी सोशल मीडिया पे ज्यादा अपडेट रन लगे हेंगे, काहे से सोशल मीडिया को अभी जमाना है वो और उनके पास एंड्रॉइड फोन रहेंगे और जैसे ही पोस्ट देखी और ऐप भी हमारे बहुत सारे साथियों ने डाउनलोड कर रहे हैं तो हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। कैसे हम हमारे साथ जो स्नेह आपको बनो है वो और आप जो आपकी स्नेह से हम जो कार्यक्रम तैयार करा थेंगे, आपके समय को देखा दबाए, आपके जलवायु परिवर्तन को देखा दबाए, सारे चीजन को देखा दबाए, हम अपने श्रोता साथियों को कार्यक्रम जो बना थेंगे उनको भी बड़े अच्छी तरीके से सुनाते हैं और हमें फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से भी बताते भी हैंगे।
0: बिल्कुल, अब देखो आपने व्हाट्सएप की कही हैगी तो हम व्हाट्सएप पे भी बता देवे कि रात के ना भी दिन रात देख रहा है कि क्या बज रहा है, फोन लगा दो अपने साथी पे तो
1: अच्छा।
0: काहे के दिन के काहे नेटवर्क तो बिजी जाऊ दई और अपन वरन को जो रेडियो बुंदेलखंड जेते बनो है गो सुबह तक ऐसा स्थान है गो के उते टावर ने कम आउत है सो ई वजह से भी अपने साथी फोन तो लगाऊ थेंगे लेकिन वो अपन तक नहीं पहुंच पाते, तो ऐसे में आपको शिकायत करने की जरूरत नहीं है।
1: ठीक है भैया, तो सबसे पहले साथियों को बता दे वो चाहते हैं कि आज के जा कार्यक्रम शुभ कल में हम बहुत बहुत स्वागत कराते हैं आपके रेडियो साथी मनीष
0: और भैया हमें तो आप चिंता ही हुजो, हमारा नाम है वर्षा
1: और साथियों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शुभ कल को।
0: श्रोताओं यह कार्यक्रम लोरियल फाउंडेशन के सहयोग से रेडियो बुंदेलखंड पर प्रसारित किया जा रहा है और यह कार्यक्रम की 13वीं श्रृंखला है।
1: वर्षा आज के हमारे जो कार्यक्रम शुभ कल में आज अपन बैरू भौजी को भी सुनवा है साथियों को।
0: अरे बिल्कुल ये नहीं सुनवाने बैरू भौजी को तो जमानो ही है वो, काहे के अपनी बैरू भौजी जो बातचीत करती है वह 101% सत्य हो जाती और हम तो लोग उन्हीं की बात मान लेते हैंगे। सो बैरू भौजी को अपन सुनेंगे और अपनो पर्यावरण को देखत भाई अपन यही पे बातचीत अपन हो कर वो जरूरी है गो। तो देखो हम तो जा कहेंगे कि पर्यावरण को बचावे के लाने छोटे से छोटो अगर उपाय भी आप कर रहे होगे तो समझ लो कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप जो ना सोचो कि आपने अरे छोटो ही सो काम करो हम काऊ खो बतावे, आपको बताने है गो कि पर्यावरण के लाने अपन को कछु ना कछु करने आए है गो। और जो अपनी प्रकृति हैगी यानी नेचर हैगी तो जा अपने हिसाब से नहीं चलेगी अपन को बल्कि ई के हिसाब से चलने पर है गो।
1: बिल्कुल सही कही आपने, कैसे हम जो देख देंगे कि अगर अपन शादियन में भी जाते हैं दोस्तन से मिलते हैं तो अपन सेल्फी खींच के डाल देते हैं और अगर अपन अच्छो काम कर ही रहेंगे जैसे पर्यावरण को बचावे के लाने आपने पेड़ लगा दो है गो या कोई को समझा दो है गो तो बाकी एक फोटो खींच के एक अपने फेसबुक पे डाल दे या इंस्टाग्राम पे डाल दे जैसे लोग देख के और जागरूक होंगे कि भाई साहब ये संग साथी वाले हमारे भैया हैं जो बहुत अच्छो काम कर रहे हैं पर्यावरण को बचावे के लाने। तो अपन हो ऐसो प्रयास अथक प्रयास करने है कि जैसे एक दूसरे से चेन जुड़ जाएगी तभी अपन जो कार्यक्रम को एक सफल बना सकते हैंगे। एक मुहिम जो हमने सोची है थी कि आने वाले समय में हम अपने साथियों को इतना जागरूक कर दें कि जलवायु परिवर्तन के बारे में भी समझने लगे और संगे संगे पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है वो वाकई बचावे के लाने भी कम से कम सोच उनकी परिवर्तन हो जाएगी।
0: आपने देखो जा एक अच्छी बात कही हैगी कि फोटो डारबे को जमानो है गो तो ई पे एक बात और हम क्या वो चाहेंगे कि जैसे मान लो को जन्मदिन मनो ठीक है जन्मदिन मनो सो उनने का करो बढ़िया केक काटो डीजे बजो और का कहते पार्टी अच्छी मनी सो सब जने का कहे फोटो में डाल देते ही और वीडियो डाली फोटो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे फेसबुक के स्टेटस पे फोटो डाली पे के जो देखत कि कितने लाइक मिले और कितने कमेंट मिले ठीक है।
1: सही बात।
0: अब मान लो बात चीज हमने देख ली है तो हमने देख ली तो हमारे दिमाग में का चीज चले एक चीज चले कि अब हमारा जन्मदिन आए तो हम इसे और अच्छो करें इसे कि हमारी फेसबुक पे इसे ज्यादा लाइक और कमेंट बढ़ गए। तो अगर अपन अपने पर्यावरण को बचावे के लाने भी ऐसी कोनू उपाय कर रहे हैंगे तो आप

0: को सोशल मीडिया पे यानी फेसबुक पे व्हाट्सएप पे डालो ताकि आपकी पोस्ट को देखें। हो सका थे कूखो एक नई उम्मीद मिलवे, नई दिशा मिलवे कि अरे भज्जा इकेला ने भी अपन को काम करने आउते। जैसे अपन हंसी खुशी के पल तो सभी जने अपने दोस्तन के संगे बांटा थेंगे, तो अगर पर्यावरण कहे कि अपनो ही सबको है वो है ना, और इसे अपन और जिंदा हैंगे, अपन और खुली हवा में अगर सांस ले पा रहे तो इको सांस लेवे के लाने बनाने भी तो आए अपन को शुद्ध
1: सही बात
0: बिल्कुल
1: है,
0: एकदम। तो
1: बिल्कुल
0: ऐसे कि जो पोस्टें अपन फालतू की करते ही काम की भी पोस्टें करवे।
1: सही बात है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही हैगी। और संगे संगे एक बात हमारे मन में और चल रही हैगी, कैसे जब हम सवेरे आ रहे थे तो जान जो खुले जानवर नहीं रहेंगे रोड पे फिरत रहेंगे,
0: हाँ
1: तो वे पन्नी जो रहते हैं पॉलीथीन उनको खा रहे थे। तो उनको खावे से उनके स्वास्थ्य पर जो डॉक्टर बताएंगे कि यदि पन्नी जानवर खा लेते हैं तो उनके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं और संगे संगे हमारे पर्यावरण को भी बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं।
0: अरे नुकसान की ना कहो मनीष भैया, तुम पता क्या होता ही, अगर जानवर ने पन्नी खा ली तो भी उनकी आंतन में चिपक जाती
1: हाँ
0: है
1: बिल्कुल
0: और भी निकरवे को तो कोनो चांस रहते ही नहीं है। तो इसे अपन पन्नी को कम से कम कितने अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊपर अपन को ध्यान देने की जरूरत हैगी।
1: बिल्कुल सही कही है कि बिल्कुल ध्यान देवे की बिल्कुल जरूरत है कि। और ध्यान की बात आई तो अपन वेर भौजी को सुन लेते हैं, वे भी कछु किया वो चाह रही हैं पन्नी को रोक लगावे के लाने, उनने भी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो। तो चलो अपन बैरव भौजी को सुनते हैं, लेकिन कछु देर बाद सुनते हैं, एक लोकगीत को अपन सुन लेते हैं, बाकी बाद कार्यक्रम में हम बैरव भौजी को सुनेंगे।

0: अब मनीष भैया अपन और अन्य अब दिनेश मस्ताना जी और उनके साथियों की आवाज में ये इन्होंने से लोकगीत को सुनो है गो और हमें लगा था कि अब समय ना गवात भाई अपन को बेरू भोजी को भी सुन लें चज्जी का भी अपन को बहुत ही उम्दा जानकारी दे रही हैंगी।
1: तो चलो अपन सुनते हैं बेरू भोजी की जर नाटक को।
2: कल्लू के पापा हमें लगा लेकर गए, मैं रात भर चिल्लिया चिल्लिया के हट जा, भुनसा रहे जल्दी आदत जो भुनसा रहे जल्दी आदत जो लाइट भी चली जात, हाँ सोते जाने के दे तीनों बैठी रहते ही, अब हम दो रुक जाओ फिर मैं बता दूंगी, मुझे इतनो काम डरो मुझे आज सब्जी भाजी नहीं आया बिल्कुल घर में, क्या गोले बना लूं मैं अपने घर में, मेरी तो समझ में नहीं आती कि मैं करूं का, इनके माँ इतनी परेशान हो गए, ओ कल्लूगा कितने मारेगा ऐसे ही मोड़ी मोड़ा हो गए बिल्कुल।
3: तुम्हें तो उठत बैठत गलत रहे जीत, का बात है बता काय को बुलाओ?
4: मैंने काय को बुलाओ
3: और कलुगा तो गाओ तो तीरत
4: तो मैंने तुम्हें बुला भी खिलाने गई थी क्या को, अब घर में कछु नहीं खा भी मैं क्या करूँ बताओ, मैं क्या बना लू, मैं तो पूरी जिंदगी कर रही है चाहिए
3: तो उसे तना कछु कर सोते हैं तो फिफ्टी बताने लगा।
4: आओ तुम्हें तुम्हें फिफ्टी दिखा रहे, मैं बताऊँ कछु नहीं घर में आज खावे मैं क्या बना लू मोड़ी मोड़न खिलाने।
3: अरे तो ऐसी कही तो जात कछु बात की,
4: तो मैंने रात में कही नहीं आती क्या तुमसे,
3: अब मैं सो गाओ तो रात के हारो था।

0: पतो ही है चाहे इसे लगी बड़बड़ा में रात है तो पानी बरा भी जात।
1: तो तुम पानी बरा रहे में घर को काम तो कर रही होंगी, कौन का चूमे परिरत होंगी।
0: अरे तो बताई तो जात, मैं सवेरे तो आ गया तो खाई नहीं गई, अब मैं लाया सब।
1: अब तो मरंदो तुम पानी को चले जाओ, मैं चली जाऊंगी लाला जी के संगे।
0: अब तेने किचन गार्डन तो लगाओ तो बाह में नहीं हो सब्जी।
1: तो हो तो जाते है अब का रोज के रोज में बाद ना बेच जाई थी इकट्ठी, अब पानी डाल दो फिर से वही जाओ तुम।
0: बेचवे की जरूरत घरे चाहे हुए चाहे ना हुए।
1: तुम्हें पूछ तो ले थी तुमसे कि मैं बेच दूं कि नहीं बेच दूं, मोए पे चढ़े याद बिल्कुल।
0: अरे तो अब जितने पैसा जैसे बेचवे से मिले थे अब इनसे फिर से खरीद लो तनक मनक।
1: तुम्हें पैसा को रो रही क्या।
2: अरे अरे का होगा भाजी, काय लगे भौजी घुमा रहे हो, कल को कह रहा हो तो कि मम्मी घुमा रहे पापा काय मार रहे हो।
0: तू तो तनक में खबर पड़ जाते ही तो मूड पे चढ़ाए जाए।
2: अरे भज्जा ऐसी कछू बात नहीं है कि हम तो तनक जो देखा था के का हाल चाल चल रहा अपनी भौजी के भज्जा को का घर को कैसे काल चल।
1: तो लाला जी वो मैं इनसे कह रही थी बिल्कुल सब्जी भाजी नहीं खाती, तो अब लाला जी मैं का करो मैं का बना लो रोज की रोज मोई पे बड़े बिल्कुल 24 घंटा मोई पे गुस्सा होते रहते बिल्कुल।
0: देख ले जाए तो केवल बहानों से जिद लड़वे को
1: कबे लड़ी में बताओ कहूँ लड़ी आज ही तो लड़ी हो।
0: अब कैसे ठीक पे बता रही देख लेते हैं
2: देख लेते हैं शांत हो जाते हैं काय लगी भज्जा ने तनक। अब हार थको है तो आदमी को तनक कछु के है तो चेटा तो जरूर ही आदमी। अब
1: हाउ सब रे मुंह पे उतरत बिल्कुल गुस्सा में तो बिल्कुल ऐसी आई होंगी।
0: अरे अरे जो हो जा अब नहीं रो सही तो कह रहा हो। और वो
1: हाँ तो आप सही कह रहे हैं, तुम दो जने जुड़ गए होंगे, अब मेरी कोई है वो पिछले भी।
2: अरे भाजी ऐसी कछु बात नहीं है, कोई को से नहीं मिल रहा जो है कि अब जैसे कोनो आदमी हार थकवा तो बात पूछे के का पानी पीने के का खाने और तुम और उल्टी गाड़ी में सुनाने लगो तो आदमी को दिमाग खराब ना हुए।
1: अच्छा और मैं दिन भर की काम कर रही हूँ कछु नहीं है, मैं को नहीं पूछे भज्जा ने एक बार पूछे की मैं दिन भर कहाँ करत होंगी।
0: हाँ मुझे तो पतो है कि ते घूमे भी जात लाला जी के संग में। अब तो शांत रहिए, अगर रोज गाय अगर मुझे पतो चल गाओ फिर मैं शाम के बताऊँ तुझे।
1: हाँ मुझे काकन ने रोके मुझे सब आराम से मिलत रहे सो मुझे काकन ने चार बातें करके।
0: ठीक है लाला जी तो है सो इनसे मंगा लीजिए जो कमी पड़े सो।
1: लाला जी देख लो तुमने अपने भज्जा को जी है इनके हाल।
2: अरे भौजी घर में ऐसा नहीं हो तना तुम शांत हो जाओ करे भज्जा कहूँ गुस्सा हो तो तुम हो जाओ शांत कहूँ बे हो जाओ करे शांत ऐसे चलत घर बार।
1: हाँ तुम हो सो तुम हम डॉक्टर लगे होंगे। अब मैं बाजारे जा रही थी। हाँ
2: बाजार जाने।
1: हाँ
2: अरे बाजार ही तो मैं जा रहा हूँ तो वो कल पहुँच गया के मम्मी को मार रहा पापा है मैं तो ऐसी सुनी से दोबारा भगत आओ तो रोटी नहीं खा पाई।
1: काले भी जा रहे थे मुझे तो सब्जी ले भी जाने लाला जी चलो मैं तुम्हारी संगे।
2: अरे तनक मुझे राशन ले आने तो घर को धनु कह रही थी कि वो चून बढ़ा गो तो एक बोरी ले आने चून मुनो वो तनक मसाले ले आने थे।
1: हाँ ठीक है तो फिर चलो फिर मैं अभी चल रही संगे नहीं चलेंगे अभी तो तू जाने मंडी तक ले लो लाला जी तुम ले लो हम ले लेते तो सब्जी।
2: अब भाजी मैं बगल की वापस हट की दुकान से जो सौदा लेता हूँ तनक
3: हाँ, मसाले हाँ। लेने तो तनक
2: वो लेने तो आटो लेने तो
1: हाँ, हाँ, हाँ, ले आओ ले आओ और मैं लाए ले खाऊंगी भज्जा जा सब्जी देखो का भाव दाई। अच्छा आलू है का भाव दाए 10 रुपया किलो दे दू मैं ठेला में डाल दू लो डाल दू।
2: अरे भज्जा जल्दी कर तनक भाजी और हमें चेक चेक करने लगे का टेम कर दो जल्दी दे दो तनक मसाले दे दो। अब काय में दे रहे। अरे पन्नियाने में दे दो तुमसे कितनी दार कही अब कौन घर से हम हमेशा झूले लिया है पन्नियाने में दे दो जल्दी भौजी और हल्ला करे ले आओ जल्दी रख दो ले जो पैसा अपने चलो भौजी ले ले हमने सब्जी
1: का कह रहे लाला जी अबे और रुकने कितने टाइम हो रुकने।
2: अरे लेब गए मसाले मसाले सब जो ले लो 5 किलो
1: का लेब गए।
2: हाँ लेब गए।
1: अच्छा हाँ और काय में रख लो सामान।
2: अब जो पन्नियाने में रख लो काय में
1: लाला जी मैंने कही थी बाद ना अभी तुम्हें समझाई थी कि पन्नियन में अभी आधी दूर तक जाने से पूरी फट जाने और दूसरी अपने जो कितना नुकसान हो रहा है पन्नियन से पर्यावरण को मैंने समझाई थी तुम्हें।
2: अरे भौजी क्या करूँ ख्याल नहीं रहता का जब घर से आते ना जल्दी जल्दी में नहीं रहा।
1: जब लाला जी तुम ही नहीं करोगे तो फिर और को अपने और पड़ोस में तो कोई कर भी वालों नहीं है बताओ जब तुम ही निकालती वो नहीं कर रहे। अब मैंने बांधना भी तुम्हें समझाई थी आज भी कह रही अब तो ध्यान रखियो कम से कम पन्नियन से एक बार ना देखो तुम्हारी गज्जा ने खा ली थी पन्नी मर गई थी वाकई नहीं मर गई थी।
2: हाँ जा तो यानी सांची कह रही तो मुझे अब पक्के में ध्यान रखने आपकी राशे में जब भी आऊँ तो झूला लेके।
1: हाँ तो लाला जू अब चलो चलेंगे तो फिर ब्लैक टाइम होगा कहा कि मैं तो आज पूरा भज्जा लड़ पड़े सो दिमाग खराब है वो टेंशन में है पूरा दिमाग।
2: हाँ तो भाई जी अब जा बात छोड़ते हैं लड़की ना आपते शांत रहिए घर हल्ला ना करिए।
1: देख तुम याद रखियो अगली बार से पन्नी ना ले आज बाजार में
2: अगली बार से तो झूला ही ले आऊ मैं।
4: हाँ हाँ हाँ मजा ही आगा राम धई बेरू भौजी जो बातें अपन को बताती हैं
3: एकदम सटीक रहती हैं न्यू और एकदम सही बात बिल्कुल फिट बैठ।

0: वाली बात बताऊ दी हैंगी, बहुत अच्छी बात लगा था मैं उनकी।
1: सही कही कायस है, उनने हमें भैरव भौजी के जा नाटक में तीन चीजें हमने समझी हैंगी। एक तो जा समझी है कि सबसे पहले हमारे जो महिलाएं हैंगी उनको बचत करवो बहुत जरूरी है गो।
0: अच्छा तुम जो बताओ हमें एक बात, महिलाएं नहीं खो का जरूरी है गो?
1: महिलाओं को जासन जरूरी है। यदि पुरुष उनके घर से बाहर चले गए हैंगे या कि तुम गांव में बैठे हुए चले गए हैंगे और सब्जी की जरूरत पड़ रही हैगी तो बैठी हैं ये लोग, जब तक भी यहाँ
0: काय बैठे हैं सुबह, उनके हाथ में भी तो बात है ना पैसा टका,
1: तो वो नहीं
0: आजकल मनीष भैया आप जो गलत बात कह रहे हैं, अब भी महिलाएं नहीं रही पहले जैसी के घर ही में रहती और आदमी को इंतजार करती कि जब भी आवे जब भी पैसा खे चुन्य जब भी हम कछु सामान लेवे। अब तो देखो पूरे हिसाब किताब उन्हीं के हाथ में रहते और अपनी बहने खुद इतनी सक्षम हो गई कि वे अपने पाँव पे खड़ी भी हो रही।
1: सही, वो तो बात सही है कि क्या कायस है, अब बहुत सारी योजना और बहुत सारे समूह के माध्यम से महिलाओं को अपने सशक्त करो जा रहा है, बहुत अच्छा माध्यम है। और संगे संगे जो समूह के माध्यम से बचत की बात होती हैगी और साथ में आपसी जो बातचीत होती हैगी बात है अपने बहुत सारी हमारी बहनों को बहुत लाभ भी मिलो है गो। जो बात तो हम के वो सही बात है तुम्हारी के हमारी बहनें सशक्त हो रही और मजबूत हो रही हैं, लेकिन अबे भी कछु गांव में जब प्रथा भी हैगी के वे जब तक उनके आदमी नहीं आएंगे तब तक वे घर से ना तो बाहर न करती हैंगी और सब्जी की तो बात छोड़ो, वे उनके पास पैसा भी नहीं रहेंगे बच्चन की पढ़ाई के लाने भी, वे उन हमारे जो मुखिया रहेंगे उन पे आश्रित हो जाती हैं, तो हमें बचत हमारे जीवन में बहुत जरूरी हैगी।
0: तो देखो हम ही में जाके वो चाहूंगे कि बचत जानी कैसा कहता आपके केवल महिलाएं के लाने जरूरी है बल्कि सब जनन के लाने, हम सब के लाने बचत बहुत ज्यादा जरूरत हो देगी। हाँ तो दूसरी बात का सीखी,
1: दूसरी बात हमें जा सीखी के सब्जी तो देखो इतनी महंगी हैगी
0: बिल्कुल है।
1: और हमारे जो घर पे बहने बैठी रहती हैगी तो वे एक काम कर सकती हैं, जैसे अपन ने पहले किचन गार्डन नहीं बताओ तो उन्हों
0: हाँ।
1: कि किचन गार्डन को कॉन्सेप्ट बताओ तो कि किचन गार्डन हमारे बहने कैसे लगा सकते हैंगी अपनी घर में, तो बामे का हो तो एक तो बचत होते हैगी, बचत कैसी बचत होते, जैसे पड़ोसी के पास गार्डन नहीं है या घर में आंगन नहीं है उनके पास, तो पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के यहाँ लगा के उनसे सब्जी ले सके थेगी, तो सब्जी का ऐसे बहुत महंगी रहतेगी, तो अगर छोटी छोटी हमने पौध ले आके हाट से पौध ले आके या बाजार से पौध लगा के अपने आंगन घर आंगन में लगा दीगी बासे अपने परिवार को भी खर्चा चलेगा, अपने पड़ोसियों को खर्चा चलेगा और अपन को ताजी ताजी सब्जी अपन को मिलेगी।
0: जा तो आपने ऐनी नोनी बात कही हैगी कि अगर अपन घर में किचन गार्डन जैसी लगाऊ थेंगे तो जो छोटी छोटी सी चीजें रहती बहुत मामूली सी, जैसे कि अपन ने टमाटर लगा लें, मिर्चें लगा लें, धना लगा लें और का कहते हैं
1: भटा,
0: भटा हाँ भटा लगा लें और मैं वही में एक दो गोभी लगा लूं, धीरे धीरे करके ऐसी चीजें अपन लगाते रहो अगर तो भी एक दिन आपको इतना फायदा दें। फायदा मतलब ऐसा नहीं है कि डलियन बांधी आप बेचे आओ, ऐसा फायदा कि अपन को ताजी सब्जी घर की मिलेगी वो बिना केमिकल वाली,
1: बिल्कुल सही,
0: ताकि बाजार में जो मिल रही वह केमिकल वाली सब्जी मिल रही हैगी तो अपन एकदम कतनी के शुद्ध खाओ और स्वस्थ रहो।
1: सही बात,
0: तो ऐसो अपन को महसूस भी हो लगे है गो, तो आप जो कॉन्सेप्ट जो है गो किचन गार्डन को वो भी आप अपना सकते हो।
1: और तीसरी बात हमने सुनी हैगी और अच्छी लगी हैगी कि भौजी बाजार में गई हती और उनने खूब मना करी कि भैया पॉलीथीन को इस्तेमाल हमें नहीं करने है गो, खासतौर पे हमने पहले भी शुरुआत में बताई थी कि काय से पॉलीथीन को इस्तेमाल करने से पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान है, जानवरों को नुकसान है और हमें आपको तो है ही गो जो नुकसान है, तो जी बात को हमें विशेष तौर पर ध्यान रखने है गो।
0: तो देखो जा तो बात आप सही कह रहे हैं, तीसरी बात जो आपने सीखी हैगी काहे कि पन्नी से अपन को खुद को नुकसान होते है गो, अपने ढूर बछे जो फिरत रहते हैं बेचारे देखो वे तो काउ से कह नहीं पा रहे हैंगे हैं, उन्हें तो जब भूख लगा थेगी सुबह तो पन्नी में बंदों में ला सामान सुबह पन्नी समेत खा जाता काहे कि भी गठान तो खोल नहीं सका थेंगे।
1: सही बात,
0: तो एक तो हमोरन की खुद से गलती जा रहा थेगी में कि जो भी खाबे पीवे को सामान जब अपन बाहर फेंका थेंगे तो एक तो ऐसे ना फेंको बिल्कुल भी पन्नी में बांध के, खास तौर से काहे के गंजा बच्चे जो हैंगे भी पन्नी उठा के पूरी खा ले उठेंगे, तो खाबे की चीज अगर हैगी तो आप खुले में ऐसी रखो कि आपको पता हो कि हाँ इतने जो डोर बच्चे रोज आउ थे गो और इतना ही वो खाबे के लाने खड़ो होते, तो एक बढ़िया सो पत्थर रख दो सो ऊपर आप वो खाबे को

0: सामान रख दो और जी में वो ढूर बचे हुआ है वो खेओ अपनो चलो जे। जो नैया के पन्नी में बांध के आपने फेंक दो सुबह वो तो पका है उखो तो खावे की वो है भूख है पेट में जब भूख लगा तो कछु नहीं दिखाता है सुबह पन्नी समेत खा जाऊ थे। और दूसरा अपन को पर्यावरण से भी इससे काफी फायदा मिले है जब अपन पन्नी को इस्तेमाल कम करेंगे। देखो पहले की समय की अगर बात करें तो पहले अपने जो पुराने लोग हते जो दादा परदादा या नाना नानी हते हमेशा जब भी बाजारे जाते तो कहते ल्या बेटा वो थैला दीजिए बाजारे हुए आए। लेकिन अब वो चलन नैया अब का कहते के रंदो ऐसे ही खाली चले जा रहा है वो तीन सौ पन्नी इनमें डांग ले आए तो अपने ही हो रहे हैं कितों ना कितों इन चीज को खराब कर रहे थे। तो अपन को वो खराब नहीं करने हैं अपन को कह नहीं रहे हम के संगे संगे जो भी ध्यान रखने के अपन को अगर खुली हवा में सांस लेने हैं गो तो अपने पर्यावरण को ध्यान अपन को रखने आए और अपन को ई के हिसाब से चलने आए ना कि पर्यावरण अपने हिसाब से चले वो।
1: बिल्कुल सही की वैसा और हमने तीन चीजें सीखी सो आपको हमने बता दी हैंगी और अब हमारे साथियों ने का सीखो है भी हमें बताएं कैसे अब हमारा समय भी हो रहा जा कार्यक्रम शुभ कल से जावे को तो उनने का सीखो है गो बे हमें बता सकत हमारे जा नंबर पे
0: साथियों हमारा नंबर है 92 19 20 77 49।
1: और साथियों आपके कार्यक्रम में जब हम आएंगे तो हम आपको पूछेंगे आपसे कि आपने हमारे जो कार्यक्रम हते उनमें आपने काशी को है गो तो जरूर शामिल हो हमारे जय कार्यक्रम में अपने सुझाव जरूर दे होगे और संगे संगे आप हमें बता भी सकते हैं कि और कार्यक्रम में का अच्छो लगो और कौन विषय पर आपको बातचीत को सुनने हैं तो वह विषय को लेकर हम कार्यक्रम में हाजिर जरूर होंगे।
0: बिल्कुल तो आप अपन चला थेंगे आज के कार्यक्रम से फिर हुई मुलाकात अगले कार्यक्रम में तब तक के लाने नमस्कार।
2: शुभ कल बदलती जलवायु के लिए तैयार।

0: कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष,
0: लेकर हाजिर हैं आपका कार्यक्रम हम होंगे कामयाब। श्रोताओं आज हम होंगे कामयाब में हम बात करेंगे व्यक्तित्व विकास की, कि जो हमारा व्यक्तित्व विकास है उसके लिए हम कुछ टिप्स आपके लिए लेकर आए हैं और जो बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं आपके लिए अगर आपने सही तरीके से उनका इस्तेमाल किया तो।
1: क्योंकि देखा जाता है कि जब तक आपका व्यक्तित्व विकास नहीं होगा तब तक आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसी जगह रहते हैं जहां पर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। यदि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका अच्छा है, बोलने का तरीका अच्छा है, और क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये बातें अहम रहती हैं जब तक जब आप किसी बड़े इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर आप नए करियर की शुरुआत करते हैं। तो कुछ बातें हैं जो हमें बेहद जरूरी जानना है, क्योंकि देखा जाता है कि कैरियर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कुछ बातें रहती हैं व्यक्तित्व विकास के लिए। सरल परिभाषा में कहा जाता है कि व्यक्ति के आचरण, व्यवहार, शिक्षा, योग्यता, शालीनता, पहनावा, उदारता, त्याग, क्षमा, बौद्धिकता जैसे तत्वों को अपनाकर जो अपनी छवि को औरों से अलग प्रस्तुत करता है उसे ही व्यक्तित्व विकास कहा जाता है।
0: इसके साथ ही साथ जिंदगी के प्रत्येक क्षेत्र में यदि आप किसी को भी प्रभावित करना चाहते हैं तो आपको बेहतर प्रदर्शन करने होगा। इसके लिए आपको किसी को भी आकर्षित करने का हुनर आना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब आपके अंदर श्रेष्ठ गुणों का समावेश हो। अब हम आपको बताते हैं कि वह गुण या टिप्स कौन से हैं।
1: सबसे पहला होता है कि संतुलित एवं सुंदर आपका शरीर होना चाहिए। ये आपको बताता है, आपके व्यक्तित्व को पहचानता है, क्योंकि संतुलित शरीर से व्यक्ति की पहचान होती है, जिससे व्यक्ति के हाव भाव, चाल चलन, उठने बैठने और कार्य करने की क्रिया का पता चलता है। इसलिए शरीर हमेशा ऊर्जावान होना चाहिए तथा थकावट और आलस जैसे अवगुण आपके शरीर में नहीं होना चाहिए।
0: इसके बाद आपको शरीर की बनावट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जिम जाकर सिक्स पैक बनाएं, अपितु ना अधिक मोटा ना अधिक दुबला होना चाहिए। आप नियमित संतुलित आहार लेकर एवं नियमित व्यायाम करके संतुलित शरीर का विकास कर सकते हैं।
1: सुंदरता किसी को भी आकर्षित करने का केंद्र होती है। इसमें शरीर के काले और गोरे रंग का महत्व तो नहीं होता है। इसके लिए आपको शरीर के नाजुक अंगों जैसे आंख, बाल, नाखून, त्वचा आदि का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। इसके पश्चात साफ, स्वच्छ, कंफर्टेबल और फैशन के अनुसार कपड़े पहने, लेकिन फैशन की आड़ में फटे हुए और बेशर्मी वाले कपड़ों को परहेज करें, क्योंकि इससे आपका व्यक्तित्व नीचा होता है। आपको बता देना चाहते हैं दूसरा गुण आपके अंदर उत्तम विचार होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी के सामने अपनी बात को रखते हैं तो आपके विचारों को देखा जाता है कि आपके विचार किस तरीके से हैं।
0: बिल्कुल, और विचारों से ताकतवर कोई और हथियार नहीं होता, यानी कि विचारों से ज्यादा ताकतवर कोई और दूसरा हथियार नहीं होता है। विचारों की वजह से ही व्यक्ति को नई दिशा मिलती है और यह कुछ भी करवा सकती है। अच्छे वातावरण में रहने से, अच्छी किताबें पढ़ने से, खुली जगह में वायु का सेवन करते रहने से सरलता से ही हमारे मन को अच्छे परिणाम मिलते हैं और वे परिणाम ही हमारे विचारों का निर्माण करते हैं।
1: इसके अलावा आपका विद्यालय उत्तम हो, जिससे आपको उत्तम शिक्षा मिलेगी और आप में उत्तम विचारों का समावेश होगा, और साथ साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए विचारों का अहम योगदान रहता है। इसके लिए आपके विचार अच्छे होना चाहिए। जब आपके विचार अच्छे होंगे तो सामने वाला या इंटरव्यू लेने वाला आपसे प्रभावित होगा और आपकी आत्मविश्वास को जगाएगा। आत्मविश्वास का होना ये भी बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है और एक अच्छी बात होती है कि आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि हम ये काम को कर लेंगे।
0: बिल्कुल, यदि आपके अंदर किसी काम में पूर्ण योग्यता होने के बावजूद भी उस काम को लेकर से इनकार कर देता है या आपको किसी विषय का पर्याप्त ज्ञान होने के बाद भी उसे किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हो, इसका प्रमुख कारण है आत्मविश्वास की कमी। जी हाँ श्रोताओं, इसलिए आत्मविश्वास हासिल करने के लिए अपने गुण अवगुण का विश्लेषण कर अपने व्यक्तित्व के अंदर मौजूद कमियों को दूर करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप अधिक शर्मीले हैं, हीन भावना से ग्रस्त हैं, अभिमानी हैं या आप में किसी का भय है तो आपको इन कमियों को जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। जबकि किसी इंसान के अंदर मौजूद गुणों से ही उसका व्यक्तित्व बनता है, इसमें आत्मविश्वास बहुत ही आवश्यक है। युवा पीढ़ी में इस गुण का होना बहुत जरूरी है क्योंकि उनका भविष्य सामने होता है। अतः आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपके भीतर आत्मसम्मान, प्रतियोगिता में भाग लेना जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बेहतर है।
1: दोस्तों और भी बातें हैं जो आपके व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे कि विनम्रता अपनाएं, बातचीत की कला, सुनना या कम बोलना सीखें। ये सारी बातचीत जो रहती है आपके व्यक्तित्व को निखारती है। ये बातचीत आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत जरूरी रहती है। मित्रों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम एक अच्छे से लोकगीत को सुन लेते हैं। इसके बाद बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे और भी व्यक्तित्व विकास के जो टिप्स हैं, व्यक्तित्व विकास के गुण होते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में।
0: तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं यहाँ पर एक बढ़िया सा लोकगीत।

0: बाद एक बार फिर से स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में, जहां पर हम बात कर रहे हैं व्यक्तित्व विकास की। अभी हमने बात की श्रोताओं के आत्मविश्वास होना चाहिए हमें खुद पर। आगे हम बात करेंगे कि विनम्रता अपनाएं। बिल्कुल श्रोताओं, आपकी वाणी में मधुरता का स्वर होना चाहिए, जिससे आप अनगिनत दोस्त बना सकते हैं। इसके ठीक उल्टा अनगिनत दुश्मन भी आप। इसलिए आप कभी भी अपनी शिक्षा प्रतिभा योग्यता को ओढ़ते हुए किसी से बात ना करें, अपितु ऐसे बने रहें कि हर कोई आपसे मिलने की एवं बात करने की चाह रखे। इसके साथ ही साथ आप गुस्से पर काबू रखें और किसी कमजोर व्यक्ति का मजाक ना बनाएं। मजाक उसी का उड़ाने में मजा है जो अपने को आपसे ज्यादा ताकतवर समझता है। इसी गुण से व्यक्तित्व विकास में इजाफा होता है।
1: ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि विनम्रता अपनाए के साथ साथ हमें बातचीत की कला भी होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी के सामने बातचीत करते हैं तभी आपका व्यक्तित्व पहचानता है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो आप किसी साधारण व्यक्ति से बात कर रहे हैं या किसी पोस्ट ग्रेजुएशन व्यक्ति से आपको बातचीत करने के दौरान बार बार आंखें मटकाना, शर्माना, अटकना और मुख मुद्रा बिगाड़ने से बचना चाहिए और अपनी बॉडी लैंग्वेज का उपयोग कर नेत्र संपर्क बनाए रखना चाहिए। बहुत बड़ी बातचीत होती है, ये एक कला होती है व्यक्तित्व विकास की, ये कला होती है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, क्योंकि बातचीत के वक्त आपकी एक निश्चल मनमोहक प्यारी मुस्कान किसी भी व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव डालती है। लेकिन आपकी यह मुस्कान नकली या बनावटी ना लगे, यह नेचुरल रूप से शरीर के अंदर से आनी चाहिए। आपकी एक मुस्कान सामने वाले व्यक्ति के अंदर आपकी सैकड़ों तारीफें बयां कर देती हैं। इसलिए आप मुस्कुराने का प्रयत्न कीजिए। इसके अलावा आप अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों से मिलते हैं और कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। इसे रचनात्मक कहते हैं। और आप शायरी, लघु कथा, घटना, दुर्घटना, कहावत आदि से अपनी बातचीत में रचनात्मकता शामिल कर बेहतर प्रभाव आप डाल सकते हैं।
0: बिल्कुल, ऐसे और कई सारे ऐसे टिप्स हैं श्रोताओं, जो आप सबके लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाले हैं। एवं यहाँ पर हम बात करेंगे सुनना और कम बोलना सीखें, क्योंकि कई बार होता क्या है श्रोताओं के, हम बोलते जाते हैं, हम सामने वाले की बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है कि हमें सुनने की भी आदत डालनी चाहिए। यह वास्तविकता हमारी जिंदगी से करीब करीब समाप्त हो गई है। आज हम किसी व्यक्ति की बात कम सुनते हैं पर ज्यादा बोलते हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो उसकी बातों पर पूरा फोकस करें और जिस विषय पर चर्चा हो रही हो उससे संबंधित अगर आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछें।
1: वार्तालाप के दौरान आप बीच में दखल ना दें और ना ही रुकावट बने। समझदारी से बात करें एवं बीच बीच में आप अपना सिर हिलाएं। और जी हाँ,

0: अवश्य कहें, जिससे सामने वाले व्यक्ति को यह महसूस होना चाहिए कि आप उस व्यक्ति की बात गंभीरता से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। हालांकि आप जितना हो सके चुप रहें, क्योंकि ज्यादा बोलने वाले और खुद की तारीफ करने वाले व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है। आप एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति बनिए जो जरूरत के वक्त अपनी बात को व्यक्त कर सके। चुप रहने वाले व्यक्ति या कम बोलने वाले व्यक्ति से हमेशा लोग बातचीत करने के लिए उत्सुक रहते हैं, और इसी वजह से कोई भी व्यक्ति बेहद आकर्षित होकर उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहता है जो व्यक्तित्व विकास के लिए एक अच्छा गुण रखता है। तो ये बातें रहती हैं जो आपके व्यक्तित्व विकास को निखारने में बहुत ज्यादा जरूरी रहती हैं, क्योंकि इन बातों के बारे में आप यदि आप सोचते हैं, ये बातें आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। आप सामने वाले को माफ करना या माफी मांगना सीखें, ये भी एक तो व्यक्तित्व विकास का एक पहलू रहता है। इसका भी हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी अपमानित आपको करता है, अपशब्द कहता है, बुरा व्यवहार करता है, तो आपके मन में उस व्यक्ति के लिए नफरत पैदा हो जाती है। ऐसा होना ही नेचुरल है, लेकिन कुछ समय बाद उसको अपनी गलती का एहसास होता है, वह आपसे माफी मांगने आता है, और आप उसे मुंह मत मोड़िए और उसे तुरंत माफ कर दीजिए, क्योंकि वही व्यक्ति माफ करता है जो अपने तन मन से घृणा, बुराई, कलेश को दूर करना चाहता है, अपने दिल में पवित्र करना चाहता है। इसके ठीक उल्टा, यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो आप माफी मांगने से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि जिसमें सीखने की असीमित क्षमताएं होती हैं वही व्यक्ति माफी मांगता है, और माफी मांगने से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है जो सर्वोच्च व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ज्यादा अहम रहता है।
1: बिल्कुल सही कहा है आपने। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके द्वारा या किसी और के द्वारा कोई गलती हुई है, और अगर सामने वाला आपसे माफी मांगने के लिए आ रहा है, तो उसे माफ भी कर दें। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप भी उससे माफी मांग सकते हैं। ये हमारे एक व्यक्तित्व विकास की बहुत अच्छी कड़ी होती है जिस पर हम कायम रह सकते हैं। आगे अगर हम बात करें सकारात्मक नजरिया, यानी कि पॉजिटिव सोच हमेशा बना के रखें। सकारात्मक नजरिए से आशा यह है कि इस जीवन में अपने कर्तव्यों, निर्णयों, संकटों, उलझनों, रुकावटों, संघर्षों, दैनिक व्यवहारों तथा अन्य किसी भी कार्य में कामयाब होने के लिए आपका नजरिया सकारात्मक होना चाहिए। अगर आप निराशा से आशा प्राप्त करने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं तथा जिंदगी की समस्याओं से विचलित ना होकर समस्याओं का समाधान करते हैं, हर बुराई में अच्छाई की तलाश करते हैं, तो आपका नजरिया सकारात्मक है। इसके ठीक उल्टा अगर जाएंगे तो आप नकारात्मक नजरिए का शिकार होंगे, जो आपके वर्तमान एवं भविष्य के लिए खतरनाक है। नजरिया बुरा होने पर आपको सिर्फ कुछ समय के लिए खुशी मिलती है तथा लंबी खुशी के लिए आपको सकारात्मक नजरिया विकसित करना होगा, जिससे आप लंबे समय तक खुद को खुश रख सकते हैं, और यही खुशी आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में निखार लाएगी।
0: ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि सकारात्मक आपका नजरिया है, यानी पॉजिटिव आउटलुक है आपका, तो आप दूसरों को खुश रख सकते हैं और उनकी खुशी में ही आपकी खुशी रहती है। इससे आपका ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, यानी व्यक्तित्व जो विकास रहता है वो उसमें एक अहम कड़ी मिलती है। सीखना बंद तो जीतना बंद, यानी आप पता होगा, क्योंकि व्यक्तित्व विकास में ये होना बहुत जरूरी है। आपने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी के शो कौन बनेगा करोड़पति को सुना ही होगा आपने। सीखना बंद तो जितना बंद, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सीखता वही है जिसमें जीतने की उमंग होती है और जिसका दिल जवान होता है, जबकि सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। सीखना कभी ना खत्म होने की प्रक्रिया है, इसलिए सीखने के दौरान गलतियां ना करें और दूसरों की गलतियों से सीखें और अपनी गलतियों में सुधार करें।
1: इसके साथ साथ लगातार सीखने की अनवरत कला से ही आप नए नए लोगों से मिलते हैं, नई नई जानकारियां हासिल करते हैं, और इसी कला से आपका व्यक्तित्व विकास होता है।
0: और आप

0: है, हम आपको बता देना चाहते हैं ये कार में योग्यता, ये भी आपके व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार एक निश्चय विषय या क्षेत्र का चुनाव कर उस पर अग्रणी रहें और आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करें। जिस विषय को आपने चुना है, सबसे पहले उसमें गहराई तक जाएं, उसके बारे में जितना ज्यादा हो सके ज्ञान प्राप्त करें। इससे हकीकत में यह होगा कि मान लीजिए अगर आपसे किसी ने आपके कार्य से संबंधित कुछ सवाल किए, लेकिन आप उन सवालों का जवाब सही ढंग से नहीं दे पा रहे हैं, तो इससे आपका व्यक्तित्व लो होता है, यानी कमजोर होता है। अतः आप अपने काम में होनहार बनिए। इसके अलावा आपको देश विदेश के बारे में मनोरंजन एवं ज्ञानपूर्ण जानकारी रखना अन्य लोगों के मध्य आपको लोकप्रिय बनाता है।
1: आगे हम बात करेंगे अगर निष्कर्ष की, तो इस बात में हम आपको 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक में आने वाले हर वह खास टिप्स बताते हैं जिससे आप अपनी कमियों को आसानी से दूर कर सकते हैं।
0: यदि आपने अपने जीवन में यह खास टिप्स नियमित आधार से अपनी दिनचर्या में उतार लिए, तो यकीनन आप खास पर्सनालिटी डेवलपमेंट के धनी बन जाएंगे। आशा करते हैं कि आपको यह लेख पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स, व्यक्तित्व विकास के टिप्स आपको बेहद पसंद आए होंगे। आने वाले समय में हम आपको और भी व्यक्तित्व विकास से जुड़ी बातचीत हम लेकर आएंगे। साथियों, इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने का। तो आपको ये जानकारी हम जो दे रहे थे व्यक्तित्व विकास के बारे में, जो आपके लिए बहुत जरूरी रहती है जब आप किसी के पास बैठते हैं या इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो व्यक्तित्व विकास होना बहुत जरूरी रहता है हमारे युवा साथियों के लिए।
1: बिल्कुल, तो हमें उम्मीद है कि जो भी टिप्स हमने आप सबको बताए हैं उन पर आप काम करेंगे, यानी कि अपने व्यक्तित्व विकास में उनका उपयोग जरूर आप करेंगे, तो आपके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा। अगर साथियों आप इन सबका उपयोग कर रहे हैं या फिर आपने इस कार्यक्रम को सुनकर थोड़ा सा भी अपने व्यक्तित्व में थोड़ा सा बदलाव किया है तो हमें जरूर बताइएगा फोन के माध्यम से, या फिर आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सवाल हमसे करना चाहते हैं तो भी आप हमारे साथ जरूर कार्यक्रम में जुड़ के और सवाल पूछ सकते हैं। तो इसके लिए हमारा नंबर है
0: 94-25-14-17-26।
1: श्रोताओं, जब कभी ये नंबर अगर ना लगे तो आप व्हाट्सएप पर इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर ये कॉल लग सकता है। और आपको एक और बात बता देना चाहते हैं, हर कार्यक्रम में जो हम बता रहे हैं कि अब अपना रेडियो बुंदेलखंड सिर्फ अपने रेडियो सेट पर ही सीमित नहीं है, अब ये ऐप के माध्यम से हर जगह उपलब्ध हो चुका है। तो हमारे और भी जो श्रोता साथी हैं जिनको रेडियो बुंदेलखंड सुनने में परेशानी होती है, उनको आप इस ऐप की जानकारी जरूर दीजिएगा ताकि वो आसानी से रेडियो बुंदेलखंड को अपने क्षेत्र में सुन सकें।
0: तो अब हमारा जाने का समय होता है, आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात।
1: तब तक के लिए
0: नमस्कार। और चलते चलते आप सुनो इस प्यारे से लोकगीत को।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाली सभी सखियों को हम यानी कि वर्षा दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं और साथ में हमारे सखियों को बता देना चाहते हैं कि हम उनका पसंदीदा जो कार्यक्रम है हेलो सहेली वो लेकर आ गए हैं। और आप इस समय अपने अपने आसपास की जो भी बहनें हैं उनको भी बिठा लीजिए ताकि उनको भी पता चले कि आपकी आवाज जो है वो रेडियो पर आ रही है। और रेडियो पर आवाज अगर आ रही है आपकी पसंद का गीत भी आएगा। तो बिल्कुल सखियों, आपको बता देना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में अगर आप शामिल होना चाहती हैं और अपने मनपसंद लोकगीत की फरमाइश करना चाहती हैं तो हमें शुक्रवार के दिन कॉल करें हमारे नंबर 94-25-14-17-26 पर। और कॉल करने के बाद आप अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकती हैं जिसको आप शनिवार को सुन सकती हैं। तो आइए, हमारे साथ कुछ सखियां हैं जिन्होंने अपनी फरमाइश करी है और सुनते हैं उनकी मनपसंद फरमाइश को।
2: हेलो सहेली।
3: हेलो सहेली, नमस्ते दीदी।
2: नमस्ते, को बोल रही?
3: पार्वती वंश का सजनपुरा से।
2: बिल्कुल पार्वती जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। बताओ का क्या बचाती हो?
3: दीदी का हमें एक वो सुना दो, एक गीत।
2: हाँ, कौन सा सुना दे?
3: बिल्कुल, मैं खेल जाती हूँ तुम्हारी नगर जाए भाई दीवानी में बारी हमारी जाए
2: संध्या सरगम को है वो। हाँ बिल्कुल, यानी नो हम जरूर सुनवा दें आपको। और बताओ पार्वती जी, प्रोग्राम कैसे लग रहा है रेडियो के?
3: प्रोग्राम बहुत अच्छे लग रहा है दीदी।
2: तो ठीक है पार्वती जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपको जरूर सुनवा रहे हैं आपकी पसंद को जो लोकगीत। ठीक है
3: दीदी, सुना।

0: सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: का नाम?
1: पान कुआ है।
0: कितने से बोल रही?
1: मस्तापुर से।
0: अच्छा पान कुआ जी, तो मस्तापुर में क्या हो रहा हो आजकल?
1: आज लोकगीत अपनी पसंद को सुना।
0: ठीक है, तो हम आपको जो सुनवा रहे हैं अपनी पसंद को लोकगीत। ठीक है।
1: हाँ
0: नमस्कार।

0: हेलो सहेली,
1: को बोल रही?
0: उमा देवी बोल रहा है मस्त आप ऐसे।
1: ठीक है तो आज बताओ कौन सा लुक किसने सुनने आपको?
0: हमें तू मसाला तो मत जा।
1: अरे वाह क्या बात है, तू
0: पंचांग और आनो। हाँ वही लोग गीत सुनने में
1: बहुत बढ़िया, तो हम आपको जरूर सुनवाए लोग गीत। ठीक है
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रही थी हमारी सखियों की मनपसंद फरमाइश को, और क्योंकि अब हमारा समय भी हो रहा है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, तो हमारी जो सखियां इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाई हैं, अगर वो अगले कार्यक्रम में शामिल होना चाहती हैं तो हमें जरूर कॉल करें हमारे नंबर 94-25-14-17-26 पर। जी हाँ सखियों, और आपको कॉल करना है शुक्रवार के दिन। तो हेलो सहेली कार्यक्रम से जाने की दीजिए अपनी दोस्त वर्षा को आज्ञा, फिर होगी आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आपने इबेरा अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। और दोस्तों, जैसे कार्यक्रम को समय भाव है सो हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम छिरिया बाड़ा। जी हाँ दोस्तों, सो साथियों, छिरिया बाड़ा कार्यक्रम में अपन बात करते हैं खेती किसानी के संगे संगे पशुपालन की। सो दोस्तों, आज अपन ई कार्यक्रम में पशुपालन की नस्लन को और पशुअन के पोषण पे उनके आहार पे अपन बातचीत करें। दोस्तों, बात करें पशु आहार शब्द, जैसे कि नाम से ही पता चल जाता के पशु की बात हो रही है। और पशु आहार यानी कि पशुओं की 24 घंटे में दी जाने वाली आहार, ऐसा आहार जो पशुओं को आवश्यक पोषक तत्वों प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, विटामिन युक्त का उच्च अनुपात और उचित मात्रा में दी जाने वाली आहार, जो पशु की बढ़वार स्वास्थ्य, अधिक दुग्ध देने में उत्तम क्षमता बनाए रखें। सो दोस्तों, पशुओं के लाने अपने आहार पे आगे भी बात करें और उनकी नस्ल पे बात करें। सो ये बातन के संगे संगे आप पहला एक बढ़िया से गीत को सुन लेते फिर आगे कार्यक्रम में। जी गीत को गा रहे हैं रामाधीन आर और रेखा राजी।

लाओ मोए कंगना जर्सी पेरे देवरानी। देखो कितना बढ़िया जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है, गीत को गा रहे थे रामाधीन आर और रेखा राज जी। अब दोस्तों अपन चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। सो दोस्तों आज के समय में पशुपालन एक बहुत अच्छी उभरता हुआ व्यवसाय है। जी हाँ, पशुपालन भी कृषि व्यवसाय की एक शाखा है जिसमें कई प्रकार के पशुओं को उनके दूध व अंडे व अन्य उत्पादों के लिए पाला जाता है। पशुपालन के लिए आपको पशुपालन की जानकारी होना अति आवश्यक है। यहाँ पर आप जानेंगे कुछ टिप्स जिसे आप पशुपालन जैसे कि भैंस मुर्गी भेड़ बकरी पालन आदि अच्छे से कर सके, अधिक मुनाफा कमा सके। सो दोस्तों अपन सबसे पहला अपने पशु की नस्ल को ध्यान से चुने। जी हाँ, अगर अपन कोनो सो भी पशु पाल रहे तो उनकी सबसे पहला नस्ल को ध्यान में रखें। खास तौर पर भैंस और बकरी पालन के व्यवसाय में जहां आपको पशु का दुग्ध व मांस बेचकर मुनाफा होता है, आपको अपने पशु की नस्ल का चुनाव काफी ध्यान से करना चाहिए। हर नस्ल का पशु अच्छा एवं ज्यादा दूध नहीं दे सकता, इसलिए आप पशु की नस्ल चुनते समय सावधानी बरतें। सो अपने पशु को अच्छे पोषण वाला आहार ही दें। अगर आप भी पशुपालन व्यवसाय से जुड़ने का मन बना रहे हैं तो आपको यह बात समझनी चाहिए कि यदि आप अपने पशु को अच्छा चारा व दाना पानी देते हैं तो उससे न केवल उसकी सेहत अच्छी रहती है बल्कि पशु की उत्पादक क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है। पशुपालन करते समय आप अपने पशु को सही मात्रा में पोषण वाला आहार ही खिलाएं, जिससे आपके पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपको मुनाफा भी अधिक प्राप्त होगा। अब दोस्तों बात आती है कि अपने पशु का आवास स्वच्छ रखें। जी हाँ, अपने पशु का जो आवास है उसे साफ और स्वच्छ रखें। पशु का आवास जितना अधिक स्वच्छ होगा उतना ही आपके पशु को बीमारी का खतरा कम रहता है। पशुओं को नियमित रूप से नहलाएं और उनके आवास के लिए किसी ऊंची जगह का चयन करें जिससे बारिश एवं नालियों का पानी मलमूत्र इत्यादि से वह बाहर रह सके। आपके पशु के आवास में कम से कम 2 से 3 जगह से अच्छी धूप आनी चाहिए। आवास में धूप के आने से न केवल वहां के कीटाणु मरते हैं बल्कि आपके पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। पशु के लिए पानी की सुविधा। पशु आवास में पशु के लिए पानी एवं खाने की उपलब्धता का भी ध्यान रखें। डेयरी के कामों में वैसे भी पानी की काफी जरूरत होती है और खास तौर पर गर्मी के मौसम में आपको पशु के लिए पानी उचित मात्रा में जरूर रखना चाहिए। पशु के स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखें। पशुपालन में अपने पशु के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पशुपालन में सबसे जरूरी बात यह होती है कि आप अपने पशु को सही समय आने पर उसे सभी आवश्यक टीके लगवाएं, उसको लू लगने से बचाएं, चारा पर्याप्त मात्रा में दें ताकि उसका स्वास्थ्य ठीक बना रहे। पशु की नियमित रूप से डॉक्टरों से जांच कराते रहें। अगर आपका पशु कभी बीमार होता है या आपको वह कुछ सुस्त दिखाई देता है तो तुरंत उसे

जानवरों के डॉक्टर को दिखाएं, ऐसा हो सकता है कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो। कभी भी जानवर के बीमार होने पर खुद उसका इलाज करने की कोशिश ना करें, यह आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अपने पशु को अच्छा मुनाफा होने पर ही बेचें। अपने पशु को बेचने के लिए सही समय आने का इंतजार करें। अच्छी नस्ल वाले पशु को सही समय आने पर काफी अच्छे दामों में बेचा जा सकता है। जैसे कि अगर आप बकरी पालन करते हैं तो बकरी ईद के समय पे अपनी बकरी को अच्छे मुनाफे पर भी बेच सकते हैं। पशु उत्पादों में मिलावट ना करें। अगर आप बाजार में पशु का दूध बेचना चाहते हैं तो आपको काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है, पर अगर आप अपने पशु उत्पाद में पानी या किसी और चीज की मिलावट करेंगे तो वह आपके व्यवसाय के लिए हानिकारक हो सकता है। पशु उत्पाद में मिलावट करने से आपका मुनाफा तो बढ़ जाता है, लेकिन मिलावट करने पर आपके ग्राहक आपके उत्पाद को नापसंद करने लगते हैं व आपके खिलाफ शिकायत भी हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अगर आप सघन पशुपालन या आश पशुपालन करना चाहते हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी उचित ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आप जानवरों से होने वाले रोगों के शिकार बन सकते हैं। टीबी जैसे रोगों से एक उदाहरण है। जानवरों के मल में पैदा होने वाले बैक्टीरिया और उनमें बैठने वाली मक्खियां आपको बहुत बीमार कर सकते हैं। पशुपालन की सरकारी सेवाओं का भी लाभ उठाएं। सरकार की तरफ से कृषि उद्धार के लिए किसान हेल्पलाइन जैसी कई सेवाएं शुरू की गई हैं। आप इन सेवाओं का लाभ अपनी भाषा में मुफ्त उठा सकते हैं। यह सुविधा 24 घंटा सातों दिन चालू रहती है। तो कभी अगर आपको पशुपालन से संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो देर किए बिना किसान हेल्पलाइन पे आप कॉल कर सकते हैं। किसान हेल्पलाइन नंबर है 1551 या 1800। तो देखो दोस्तों, जो अपन ने पशुपालन से संबंधित जानकारी जानी है, अब एक क्रम में अपन एक गीत को सुनत और गीत को आनंद ले। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। आओ दोस्तों, सुनत ही गीत को जिया गा रहे हैं राजकुमार त्यागी जी और अमूल अहर।

बिल्कुल दोस्तों, जो 3 दिन आपको मिला री उड़ जे है हंस अकेला। देखो कितना अच्छा जो गीत अपन सब जनन ने सुनो, गीत को आनंद लो। ये गीत खुंगा रहते अमूल अहरवाल जी और राजकुमार त्यागी जी। अब दोस्तों आज के ये कार्यक्रम छिड़कियावाड़ा से आपके दोस्त मातादिन भैया को जाबे को समय हो गए है, सो हमें दो ये कार्यक्रम से जाबे की अनुमति। अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात ये कार्यक्रम में एक बेरा पे, जब तक के लाने नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इवीरा अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जनने के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और दोस्तों, कार्यक्रम विधा बुंदेली में अपन एक विधा को सुनते हैं और वो विधा को आनंद लेते हैं। सो दोस्तों, आज के अपने कार्यक्रम विधा बुंदेली में अपन सुने विधा श्रृंगार गीत को और श्रृंगार गीतन को आनंद लें। दोस्तों, जो श्रृंगार गीत एक बहुत ही

बोले कि ऐसे में नहीं आ रही समझ में, बताओ तुम तो स्पष्ट। हमने कहीं देखो श्रृंगार की बात है के कनहर जैसी डार राम धई, कनहर जैसी डार राम धई ओ पाला।

खोले के देखो, ऐसे में भी समझ में नहीं आ रहा हुआ। कर्दोनी दो जनी पे रहे, हमने की नहीं जीने बना दही कर दो।

लेके तुम तो जा बताओ, पीली साड़ी बारी यहाँ? हमने की नहीं। बोले नीली साड़ी बारी? बोले नहीं। बोले फिर कौन? हमने की है। अरे गंजले ठाकुर दई हम ही खा, गंजले ठाकुर दई हम ही खा चीज।

0: बिल्कुल दोस्तों, मटकत आ रही लटकत आ रही कमर में कर धोनी मोरी बेला कली। देखो दोस्तों कितनों प्यारो जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, जो सिंगार गीत है, और दोस्तों ये गीत को गा रहे थे भैया राम कुमार प्रजापति जी। अब दोस्तों आ सुनते हैं अगले साथियों के गायब है सिंगार गीत को।
1: नई नई दुल्हन सज गई है न घुंघटा मैंने।

बिल्कुल दोस्तों, गोरे हैं गाल दुई होंठ लाल रेशम से वाल कारे कारे। देखो कितना प्यारा जो श्रृंगार गीत अपन सब जन ने सुनो है, इस श्रृंगार गीत को आनंद लो है, ई गीत को गा रहे थे रामाधीन आर जी। सो दोस्तों रामाधीन भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो ने तो अच्छो बढ़िया श्रृंगार गीत गा के अपन सब जन को सुनाओ है। अब एक क्रम में फिर से सुनाते हैं अगले साथी के गाय भाई श्रृंगार गीत को और लेते हैं उनके गीत को आनंद। सो दोस्तों आप ऐसे बने रहो।

काले लाल सिंगार है, सिंगार भोसते देखे हैं सुने हैं आपने, जो तो लाल है केवल के लाल लाल चोली और चूनर है लाल, लाल लाल चोली और चूनर है लाल, लाल लाल साया पे, लाल लाल साया पे।

पावन माहौर जो लगो लाल लाल हर पावन माहौर जो लगो लाल लाल और लाल लाल चुकटन में लाल लाल चुकटन में ककरा है लाल लाल लागो है।

लागो है नीको जो लाल बूंदा। देखो कितना प्यारो जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, श्रृंगार गीत को आनंद लो है। इस श्रृंगार गीत को गा रहे थे भैया राम कुमार प्रजापति जी। अब दोस्तों राम कुमार भैया जी के गीत के बाद आप फिर से सुनते हैं अगले साथी के गायब है गीत को।

मन रही भोरा हे भौजी सदी मोर मोटर की कर सोला सिंगार मन रही भोरा भौजी सदी।

0: दोस्तों, भौजी सजी मूर मोटर सी करसु लो सिंगार मनोरंजन लिभोरा। देखो कितना प्यारा जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, इस सिंगार गीत को आनंद लो है। इस सिंगार गीत को गा रहे थे भैया राम सुमन अहरवार जी। सो आओ दोस्तों, फैशन सुनते हैं अगले साथी इनके गाय भाई गीत को।
1: अरे जा गोरी

ਹੁੰਦਾ ਲਾਲ ਭਾਲ ਪੇ ਦਮਕੇ ਪੂਨੇ ਜੇ ਸੋ ਚੰਗਾ ਚਮਕੇ।

बिल्कुल दोस्तों, जागोरी बुंदेलखंड की अजब करे सिंगार, लगत देखत रहिए। तो देखो कितनो प्यारो जो सिंगार गीत अपन सब जनों ने सुनो है, इस सिंगार गीत को आनंद लाओ है। दोस्तों ये गीत को गा रहे थे भैया खूबचंद कुशवाहा जी। आप दोस्तों खूबचंद कुशवाहा जी के गीत के बाद आप फिर से सुनते हैं अगले साथियों के गाय भाई गीत को और लेते हैं उनके गीत को आनंद। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

एक एक कजरवा कारो के गोरी धना जादू सो डारो। देखो कितना प्यारो जो श्रृंगार गीत अपन सब जन ने सुनो है, इको आनंद लो है। अब दोस्तों ये गीत के संगे संगे हम बता देवे कि ये गीत को गा रहे थे भैया राम सुमन अहरवार जी। अब दोस्तों ये कार्यक्रम से अपने दोस्त माता दीन भैया को अब जाबे को समय सो हो रहा है। सो दोस्तों अपने दोस्त माता दीन भैया को दो ये कार्यक्रम से जाबे की अनुमति अपनी तपनी फिर हुई है मुलाकात है कार्यक्रम में ये बेरा पे। अब अपने माता दीन भैया को दो जाबे की अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप सुन रहे थे आज की सभा के प्यारे प्यारे से कार्यक्रम। तो दोस्तों, आप सब जन को जी आज के कार्यक्रम कैसे लगे। अब दोस्तों, आज की सभा इतनी संपन्न होत है, सो चलत चलत आपों ने लिख लो हमारे फोन नंबर को और पते को, जिसे आपों ने फोन नंबर पे और पते पे हमें कार्यक्रम के राय सुझाव भेज सके। दोस्तों, हमारा फोन नंबर है 92-19-20-77-49। सो ई नंबर पे आप फोन लगा के और हमें बता सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे। अब दोस्तों लिख लो हमारे पते को, हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तेगेला के पास ओरछा। सो आप और ई पते पे चिट्ठी पत्री लिख के भी भेज सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं। अब आज की सभा को इतनी समापन हो गए को समय हो गए है। नमस्कार।
1: ये आवाज है बुंदेलखंड की।